सुप्रभात, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 6, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:49 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: सौंदर्य शाश्वत चेतना का स्रोत है, चित्त की इच्छा ही इसका मुख्य हेतु है। सुंदर और असुंदर की धारणा प्राण तत्व के अनुसार होती है। सौंदर्य उच्च कोटि के आनंद और सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। सुंदर बोध हमें निस्वार्थ आनंद देता है। अनंत का शांत रूप में प्रकट होना ही सौंदर्य है। भगवान अत्यंत मंगल है, सत्य है, सुंदरता की खान है। सौंदर्य का संबंध आत्मा की उदात्त वृत्ति से है। हमारी सांस्कृतिक चेतना जितनी उदात्त होती है, सौंदर्य चेतना उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है। सौंदर्य में रोचकता उसका प्राण है। सौंदर्य की तृप्ति से ही जीवन का विकास, हृदय में उदात्त वेदना का संचार, प्राणों में स्फूर्ति का संचार और कल्पना के लिए नवीन प्रकाश का सृजन और शांति का संचार होता है। बुद्धि को नई चेतना मिलती है, कल्पना को सजीवता मिलती है। आनंददायक गुण है सौंदर्य। सौंदर्य से जो रस उत्पन्न होता है वही आनंद है। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारे हृदय में उसकी अनुभूति होती है, उससे आनंद मिलता है। सत्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वो प्रसन्नता और शिवानुभूति का साधन है। सत्य वो है जिसमें हमें विश्वास हो, और विश्वास वही होता है जहां अनुभव का विरोध न हो। सौंदर्य आनंद का ही दूसरा नाम है। जो सुंदर वस्तु है उसका गुण है, उसका धर्म है सौंदर्य। हीरे के गुण की परख के लिए जौहरी की आंख चाहिए, रिझाने वाले रूप के लिए रिझाने वाली आंखें चाहिए। उपनिषदों में सत्य और शिव की सुंदर अभिव्यक्ति है। सौंदर्य मनोज्ञ रहता है, प्राण ही अंगों का रस है। रस को राग कहा गया है, प्रीति और वेग का पर्याय कहा गया है। सृष्टि में चार

0: ओर दिख रहा है एक चिर सौंदर्य, एक चिरंतन सत्य का आभास हमें चतुर्दिक हो रहा है। सौंदर्य सात्विक, निर्दोष और प्रकाश की तरह है। वेदों में सौंदर्य को स्वास्थ्य कहा गया है। सौंदर्य देखकर सभी की दृष्टि बार बार उधर ही जाती है। यह एक जादू है, जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती है वो उधर आकृष्ट नहीं सकता। पाप और सौंदर्य दोनों का आपसी मेल नहीं होता। सुंदर आकृति से असुंदर कार्य उत्पन्न नहीं होते। तन का सौंदर्य तो देश और काल की सीमा में ही सीमित है, लेकिन जो सद्गुण है उनका सौंदर्य चारों ओर फैलता है। ये फूल की खुशबू की तरह है, जो किसी देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहता, फैलता है और एक समान पूजनीय होता है। जो हम सौंदर्य की उपासना की बात करते हैं, तो हम सद्गुणों के सौंदर्य को देखें, उसे महसूस करें, उसे तलाशें, उसे उभरने का मौका दें। और सद्गुणों का सौंदर्य वहीं रह सकता है जहाँ प्रकृति से साहचर्य है, जहाँ ईश्वर की अनुभूति है। आइए इन विचारों को हम फलीभूत होने दें।
1: श्रोता सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। सुबह के 5:55 हुए हैं, समय हो चला है किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी बातों का। जी हाँ, कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाइयों, आजुक दिन अपना सब चर्चा करब मकई के आधुनिक खेती के संबंध में। किसान भाइयों, मकई एकटा प्रमुख खाद्य फसल है। ये भारत में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में उगाओल जात है और एक बलुई दोमट माट में सबसे नीक तरह उगाओल जा सकत। किसान भाइयों, मकई मुख्य रूप खरीफ फसल है, मुदा उचित पटौनी के सुविधा है पर एक रवि और जायद में से उगाओल जा सकत। मकई कार्बोहाइड्रेट के एक नीक स्रोत है और एक उपयोग रोटी बनवा, जे अपना सब एखन देखे छी, मकई के अलावा कॉर्नफ्लैक्स, पॉपकॉर्न और बायोफ्यूल में सेहो होइत अछि। त केना करी एकर खेती, एकर संबंध में आजुक दिन अपना सब चर्चा करब। त सबसे पहले बात अबैत अछि सामने उपयुक्त जलवायु। किसान भाइयों, मकई के उन्नत खेती विभिन्न तरह के जलवायु में कयल जा सकैत अछि। एकरा लेल उष्ण और आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम होइत अछि। पटौनी के लेल नीक प्रबंध हेबा पर एकर खेती रवि में सेहो कयल जा सकैत अछि। एकर बुआई के समय के संबंध में अगर गप करी, तो मकई के बुआई रवि और खरीफ दुनू फसल के मौसम होइत अछि। अगर अहाँ खरीफ में एकर खेती करय चाहै छी, तो जून से जुलाई के महीना सबसे नीक मानल जात अछि। और रवि में मकई के खेती करबाक अछि, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच बुआई कऽ सकै छी। एकरा अलावा जायद में यानी कि फरवरी से मार्च के बीच में सेहो मकई के बुआई कयल जा सकैत अछि। बीया के मात्रा के संबंध में गप करी, तो छोट दाना वाला किस्म प्रति एकड़ 6.4 से 7.2 किलोग्राम बीया नीक होइ छै। संकर किस्म के लेल प्रति एकड़ 8 से 8.8 किलोग्राम बीया नीक मानल जाइ छै। और संकुल किस्म में प्रति एकड़ 7.2 से 8 किलोग्राम बीया नीक मानल जात अछि। किसान भाइयों, आब बुआई के लेल दूरी के संबंध में अगर गप करी, तो कतार से कतार के बीच दूरी 60 सेंटीमीटर, अगेती किस्म के लेल पौधा के बीच 20 सेंटीमीटर, देरी से पाके वाला किस्म के लेल पौधा के बीच 25 सेंटीमीटर, बुआई से गहराई करी 3 से 4 सेंटीमीटर। किसान भाइयों, एते अगर अपना सब मेहनत करे छी और कोनो नुकसान का डर रहिए, तो ओहियो पर अपना सब का पूरा पूरा ध्यान रहित अछि। तो बीज उपचार पर अपना सब चर्चा करी। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम मकई के बीया के 2 ग्राम कार्बेंडाइजिम से उपचारित करी, प्रति किलोग्राम बीया के 2 ग्राम कैप्टॉन से सेहो उपचारित कयल जा सकैत अछि। पौधा में कईक तरहक रोग से बचाव के लेल प्रति किलोग्राम बीया

0: 5 ग्राम थीरम से सेहो उपचारित कऽ सकै छी। जैविक विधि से मकई के बिया का उपचारित करबाक लेल बीज अमृत के उपयोग अपना सब कऽ सकै छी, मुदा अपना सब अक्सर चर्चा करै छी जे कृषि वैज्ञानिक के सलाह सर्वोत्तम होइत अछि, तो हुनकर सलाह अपना सबके समय समय पर लैत रहबाक चाही। संगे ही अपना सबके बिया एहन जगह से किनबाक चाही जे मान्यता प्राप्त हुआ। एकरा संगे संग एकर उन्नत किस्म के गप करी तो आजाद उत्तम देहात जम्बो 55 91 81 P 34 01 पैनियर NK 6240 सिंजेटा NK 7720 अफ्रीकन जायंट ई सबटा एकटा प्रमुख किस्म अछि। खेतक तैयारी के संबंध में किसान भाई लोकनि अगर अपना सब गप करी तो खेत तैयार करैत समय सबसे पहले माटि पलटो वाला हर या फिर डिस्क हैरो से 1 से 2 बेर गहीर जोताई कऽ कऽ ओकर बाद देसी हर या कल्टीवेटर से 2 बेर हलुक जोताई करबाक चाही। नीक फसल प्राप्त करबाक लेल प्रति एकड़ खेत में 3 से 4 टन नीक तरहक सरल गोबर के खाद मिलेबाक चाही, क्योंकि कचका गोबर से दीमक के पनपबाक संभावना सेहो बढ़ि जाइ छै। तो अपना सब जखन पूरा पूरा ध्यान राखै छी तखने अपना सबके नीक फसल प्राप्त होइत अछि। तो अपना सबके ई पूरा चीज के ध्यान कोनो खेती में राखऽ पड़ैत अछि। एकरे संग आजुक कृषि चर्चा के एतहि विराम दैत आशुतोष कुमार झा के विदा देल जाओ। नमस्कार।
1: किसान भाई सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय था मक्का की आधुनिक खेती। जानकारी दे रहे थे आशुतोष कुमार झा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 6 होने वाले अब हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
3: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को

0: किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं, आज स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे डॉक्टर नंदिनी सिन्हा से, जो एक डायटिशियन है। बातचीत का विषय होगा बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। डॉक्टर साहब, संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका?
3: बैलेंस डाइट का मतलब है कि ऐसा आहार जिसमें कि हम एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, मतलब जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर भी है। वाटर भी हम बैलेंस डाइट में लेते हैं कि आप पानी कितना पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें का अगर मिक्सन जो एक प्रॉपर अमाउंट में अगर कोई ले रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट।
2: तो बैलेंस डाइट में एक आम आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि हम जो चीज़ ले रहे हैं उसमें कौन कितना फैट है, कितना विटामिन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है?
3: देखिए, इतना तो पता कर पाना थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक एवरेज जो एक पर्सन के लिए जो कैलोरी होती है डेली की, वो होता है 2000 किलो कैलोरी। कि अगर कोई एवरेज आदमी है 2000 किलो कैलोरी ले रहा है प्लस 60 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, दैट मीन्स कि ही इज टेकिंग बैलेंस डाइट।
2: तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी कर सकता है, क्योंकि एक लेबर क्लास का आदमी जो खेतों में काम करता है उसकी कैलोरी डिमांड ज्यादा होती है। और जो कार्यालय में ऑफिस में कुर्सी पर बैठ के काम करते
3: हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे जो कार्यालय में बैठे हैं, जो सिटिंग है जिनका, उनका जो है थोड़ा कम होता है। लेकिन जो सेडेंटरी है, मान लीजिए कोई रिक्शा वाले हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा कैलोरी नीड है। तो उसका जो कैलोरी, जैसे अगर आम मैंने जैसे कहा एवरेज पर्सन के 2000 है, तो वही वो एक हैवी वर्कर के लिए 2500 हो जाता है, 2600 हो जाता है, इस तरीके से होता है।
2: अच्छा, तो उसके कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कोई खास अनुपात भी होता है कि इतना परसेंट जो इस रेशियो में कार्बोहाइड्रेट लेना है, इस रेशियो में प्रोटीन लेना है, कोई ऐसे कुछ?
3: हाँ, कुछ ऐसे भी रहता है। हम लोग बोलते हैं कि आपका जो फूड होना चाहिए दैट इज 60% जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करवाते हैं।
2: ये जो पोषक तत्व की बहुत बात होती है कि हमारे भोजन में जो पोषक तत्व हमें लेना चाहिए, पोषक तत्व का क्या मतलब है?
3: पोषक तत्व मतलब जो हमारा प्रोटीन है वो एक पोषक तत्व में आता है। अच्छा। हमारा विटामिन्स है वो पोषक तत्व हुआ, मिनरल्स है वो पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स है वो पोषक तत्व हुआ, एक गुड फैट जिसको बोलते हैं, फैट हमारा पोषक तत्व हुआ।
2: अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति जो है हमारे यहाँ अक्सर जो है चावल दाल सब्जी खाता है, रात को रोटी सब्जी खाता है, बहुत मुश्किल से हुआ तो वो जो है सो कि दूध उसको मिलता है तो पी लेता है, तो क्या ये सफिशियंट है उसके लिए?
3: नहीं, अगर हम देखें तो सफिशिएंट नहीं हो पाता है उनके लिए। तो हम लोग फिर ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये बोलते हैं, अगर आपको मिल्क नहीं हो पाता है तो आप जो हैं जो फोर्टिफाइड आइटम हैं, जैसे कि गुड़ है जो बहुत सस्ती आती है, आप गुड़ वगैरह खाएं, आप चने वगैरह खाएं, आप सत्तू का इंटेक करें। जहाँ तक प्रोटीन का सवाल है तो हम सत्तू से भी एडिक्वेट प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं उसको कि आप जैसे कि अनाज में, जैसे कि साबुत अनाज का आप ज़्यादा उपयोग करें, अंकुरित वगैरह ज़्यादा खाएं, जो कि आपको कैल्शियम का, जो अगर आप दूध नहीं भी पी पा रहे हैं तो

0: कैल्शियम आपको उससे भी कुछ मिल सकता है।
1: मतलब जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं
0: हाँ
1: उनके
0: हाँ
1: लिए सत्तू, चना,
0: हाँ
1: मूंग
0: चना,
1: ये सब
0: हाँ ये
1: चीजें जो
0: सब,
1: है
0: हाँ
1: गुड़ काफी
0: गुड़
1: फायदेमंद
0: काफी
1: साबित हो
0: फायदेमंद
1: सकता
0: है।
1: है, लेकिन जो
0: हाँ
1: लोग एफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्या है जो खरीद सकते
0: जो
1: हैं?
0: खरीद सकते हैं उनके लिए है कि आप दूध पिएं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, दूध खाएं, दही खाएं, अंडा वगैरह लें, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन वगैरह खाएं, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्वांटिटी फिक्स होती है, जैसे आपने कहा जो ले सकते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं, जिससे कि आजकल जो आप बीमारियां देख रहे हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, ओबेसिटी है, वो कारण है इसी का, ओवर न्यूट्रिशन का, कि वो ज़्यादा ले रहे हैं, वो बैलेंस डाइट से ज़्यादा ले रहे हैं खाना, इसलिए उनका जो है जो शुगर ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, मोटे होते जा रहे हैं वो, तो उनको भी नीड है कि हाँ वो एक अपना एक तय करें कि हाँ कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितना हमको खाना है, इस तरीके से।
1: ये तो नॉन वेजिटेरियंस की बात हुई, जो वेजिटेरियन यानी शाकाहारी है वो यदि कोई चाहे कि बहुत हम रिच डाइट लें उसके लिए
0: प्रोटीन मिलता है, वैरायटी ऑफ दाल खाएं, राजमा वगैरह जो आता है, जो बीन्स वगैरह वाले जो दाल होते हैं उनको लें, मखाना वगैरह वो खा सकते हैं, मखाना रिच कैल्शियम है, तो इनको अगर हम इस तरीके से लें तो वहाँ पे जो नॉनवेज वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी।
1: फ्रूट्स के बारे में कुछ बातें होती है कि अखरोट वगैरह जो है इसका भी सेवन किया जा
0: हाँ,
1: सकता है?
0: ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट लें, क्योंकि अखरोट और बादाम जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ड्राई फ्रूट्स अगर खा सके तो वो खा सकते हैं।
1: अगर किसी ने ज्यादा खा भी लिया है अभी तो उसके लिए क्या कर सकता है? उसके लिए एक्सरसाइज यदि वो करता है?
0: एक्सरसाइज अगर करता है ज़्यादा, अगर मान लीजिए फूड इंटेक हो गया, लेकिन उसका अगर कैलोरी वो बर्न करता है, कि अगर वो एक्सरसाइज करता है तो बात फिर वहाँ पे इक्वल हो जाती है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं
1: यानी
0: आएगी।
1: आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरी बर्न होगी तो आपको नुकसान नहीं पहुंच सकता। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर नंदिनी सिन्हा से जो कि जानी मानी डाइटिशियन है यहाँ की। हमारी बातचीत का विषय था बैलेंस।

0: अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर नंदिनी सिन्हा से, जो कि जानी मानी डाइटिशियन है। यहाँ की हमारे बातचीत का विषय था बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। आप हमारे स्टूडियो में हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम का आरंभ सभी स्वर्ण गायक इस देश

समूसर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। भक्ति संगीत का हमारे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना। कहते हैं अष्ट चिरंजीवियों में सबसे प्रमुख, जिनके नाम लेने मात्र से ही हमारे रोग शोक और कष्टों का नाश हो जाए, ऐसे कृपालु राम भक्त वीर हनुमान की आराधना कभी निष्फल हो सकती है क्या? राम नाम ही जिनकी शक्ति का आधार है, राम नाम ही जिनकी भक्ति का आधार है, जो कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्तों के रक्षक हैं। सच्चे श्रद्धा और भक्ति से जिस किसी ने इन्हें पुकारा है, वीर हनुमान ने उन सबों के रोग शोक और कष्टों का नाश किया है। कहते हैं शनिवार और मंगलवार के दिन अगर सच्ची श्रद्धा से इनकी आराधना की जाए तो ये कभी निष्फल नहीं होती। आइए ना हम सब मिलकर वीर हनुमान की आराधना करें।

राम। सच में ये केवल शब्द नहीं, वो औषधि है जो हमारे मन के विकारों को दूर करती है। विकारों से मुक्त होना ही तो हर मनुष्य का उद्देश्य होता है। ये विकार ही तो हमें ईश्वर से दूर करते हैं, और इन विकारों से मुक्त होना ही तो हमारा उद्देश्य है। आइए ना, राम नाम के इस औषधि से अपने मन के विकारों को दूर करें।

0: भजो रे भैया राम गोविंद हरि। श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ दिन की शुरुआत। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान
1: एपिसोड नंबर 11।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में रामचरित मानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, जानकारी प्राप्त कीजिए आज हमारे इस केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुबह 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और आज सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। नारी संसार, महिलाओं के लिए हमारा ये कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 समय होगा देशभक्ति गीतों का और अपनी चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आपकी पसंद आज दोपहर 1:15 से। रोजगार संबंधी सूचनाएं आप प्राप्त करेंगे दोपहर 2:10 पर। अपराह्न 3:00 आज आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज की हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा तरुण कुसुम। महाकवि की रचनाएं विद्यापत गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 समय होगा ग्रामीण भाइयों के लिए हमारे कार्यक्रम गांव घर का। खेती गृहस्थी किसान भाइयों का यह कार्यक्रम होगा शाम 7:00 से। आज इस कार्यक्रम में किसान श्रोता सुन सकेंगे चर्चा नारियल की आधुनिक खेती। शाम 7:52 पर आज आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आज आप सुनेंगे रात 8:00 से। श्रोताओं, आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। विज्ञान भारती ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात 9:30 पर। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और इसके ठीक बाद यानी आज रात 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसे भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में।

0: एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में हम प्रवीण हमरा सने भाई कुशल दुनू आदमी मिलकर अपने सहस्र श्रोता के सत सत नमन करै छी, प्रणाम करै छी, नमस्कार करै छी। आओ आजुक कार्यक्रम के शुभारंभ कर रहल छी एकटा सुंदर सा विचार संग यानी सुविचार संग।
0: आज का सुविचार है चाणक्य नीति से। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यह है चाणक्य नीति।
1: बहुत सुंदर। कोनो सुविचार हमरा सबके जीवन के एकटा मूल मंत्र होइत अछि। ओहिमे गूढ़ रहस्य होइत अछि। ओकर शब्द किछु होइत अछि, शब्दार्थ किछु होइत अछि। ओकरा गुणऽ पड़ै छै, बुझऽ पड़ै छै, मंथन करऽ पड़ै छै आ ओकरा अनुसरण करऽ पड़ै छै। जीवनके सफलताक मंत्र होइत अछि सुविचार। तैँ चाणक्यके ई सुविचारके हम आत्मसात करैत कार्यक्रमके आगाँ लऽ चली। आओर आजुक दिन इतिहासमे की सब भेल अछि तकर किछु मात्र अंश।
0: आज ही के दिन सन 1838 में भारत के राष्ट्रगीत वंदे भारत के रचयिता महान उपन्यासकार एवं कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1839 में पंजाब को एक सशक्त साम्राज्य के रूप में एकजुट करने वाले महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। सन 1957 में आज ही के दिन ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर पहली बार बताया कि धूम्रपान के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और आज ही के दिन यानी 27 जून को दुनिया का पहला एटीएम लंदन के बार्कलोज बैंक में स्थापित किया गया। आज ही के दिन 1967 में
1: ई छल आजुक दिन के किछु इतिहास। इतिहास तो हर पल बनैत अछि, सब दिन के बनैत अछि, हर क्षण के बनैत अछि। इतिहास पुरुष क्यों सब होइ छथि जिनकर इतिहास में नाम अबै छनि कोनो घटना के या कोनो सभ्य मानव के। तो आओ हम सब किछु एहन देश हित में काज करी, राष्ट्र हित में काज करी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काज करी, मानव कल्याण के लेल काज करी, जे इतिहास में हमरो नाम आवे। और एहि शुभकामना संग आई सुनै छी सबसे पहले एकटा मधुर संगीत, मैथिली गीत।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: बहुत सुंदर ई मैथिली सुमधुर गीत सुनलो, मोन गदगद भेल। विकासीना जी के बहुत बहुत शुभकामना बधाई।
2: और प्रवीण जी, कार्यक्रम को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम में बहुत कुछ संजो के लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारा माध्यम सूचना से लेके हालचाल से लेके मनोरंजन तक का सफर हम एक छोटे से समय सीमा के तहत करवाते हैं। तो फिलहाल अभी कार्यक्रम में वक्त चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं प्रवीण कुमार झा।
1: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। बिहार में कतौ झमाझम वर्षा तो कतौ औसत से कम। किसान सब मायूस भेला, मानसून बढ़ेलक चिंता। उत्तर बिहार में निक वर्षा भ रहल अछि तो दक्षिण बिहार में औसत से बहुत कम।

0: वर्षा भेल अछि, जाहि कारण किसान चिंतित भेलाह। दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध व्यापार विरोध दिवस पर के शुभ अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम कयल गेल। गीत संगीत नाटक के माध्यम सँ आम जन के जागरूक कयल गेल, नशा छोड़बाक आह्वान सेहो कयल गेल। नाटक के माध्यम सँ नशा के दुष्प्रभाव आ दुष्परिणाम की होइत अछि ओ कहबाक प्रयास कयल गेल। समाज परिवार सबके लेल ई जरूरी अछि जे अपन जागरूकता के आगा बढ़ा कऽ नशा सँ मुक्त परिवार और समाज बनाबी, तहि सँ जागरूकता बढ़ै छै। सभ्य समाज में नशा के कोनो का स्थान नहीं अछि। खास कऽ देखल गेल अछि जे युवा वर्ग बेसी नशा के तरफ भागि रहल छथि, हुनका अवोध मन के रोकबाक प्रयास करबाक लेल हमरा सबके कर्तव्य निभावऽ पड़त, ई आह्वान कयल गेल जनसंपर्क विभाग द्वारा, बिहार सरकार द्वारा। एहि अवसर पर बिहार जनसंपर्क विभाग के कलाकार सब गीत संगीत नाटक नुक्कड़ आदि माध्यम सँ दरभंगा शहर के कतेको जगह पर, रेलवे स्टेशन, टावर, अन्य अन्य जगह पर कार्यक्रम चलेला और आमजन के जागरूक कलन, संगे गीतनाथ सेहो सुनेलनि। आमजन ए प्रयास के सराहना कलखिन आ कहलखिन ई साल में एक बेर नहीं बेर बेर हेबाक चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा 40 साल स्नातक कोर्स के पहिल सेमेस्टर में नामांकन हेतु चयन सूची आयल। मिथिला विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल के माध्यम सँ ई आयल अछि। सत्र 2026-2030 के लेल नामांकन हेतु पहिल सूची पोर्टल पर आबि गेल अछि। एकर नामांकन शुरू भऽ गेल आइ सँ और ई 6 जुलाई तक होयत। 7 जुलाई सँ वर्ग आरंभ होयत और एकर संचालन शुरू भऽ जायत। तैं जे केओ नामांकन करबा के लेल उत्सुक छी, ओ जाकऽ अपन पोर्टल पर जाकऽ अपन सूची में नाम देखू। जिनका सूची में नाम नहीं हुआ हुनका घबरेबाक नहीं छै, एकर दोसरो सूची आयत। विश्वविद्यालय के महाविद्यालय सब में 6 जुलाई तक एकर नामांकन होयत आ 7 जुलाई सँ एकर वर्ग आरंभ नव सत्र के भऽ जायत। दरभंगा जिला मुख्यालय के 24 केंद्र पर काल्हि यानी रवि दिन 28 जून को बिहार पुलिस सिपाही प्रचालक भर्ती परीक्षा होयत। सुरक्षा के विशेष इंतजाम भेल अछि, जाहिमे CCTV कैमरा, जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन और वीडियोग्राफी सँ एकर देखरेख होयत। परीक्षा सुचारू ढंग सँ सम्पन्न होयत भऽ जाए, एहि लेल पूरा तैयारी भऽ चुकल अछि। प्रशासन चुस्त दुस्त और सजग छथि जे परीक्षा में कोनो तरहक बाधा नहि होय। ई हाल चाल ने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

मुहर्रम पर दरभंगा के ऐतिहासिक मिलान चौक पर देखल गेल पुरान आ अनुपम दृश्य। हजार सौ बेसी भीड़ कलन भाईचारा संग तजिया मिलान अमन चैन संग मुहर्रम सम्पन्न भेल। ओना कतौ कतौ छोट मोट घटना के सेहो सूचना भेट रहल अछि। शांति व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त छला और जगह जगह पर से हुनकर मुस्तैदी देखल गेल। एम्बुलेंस के सेहो कहल गेल छल जे जगह जगह पर ठाढ़ रहैत। एहि क्रम में कुशेश्वर स्थान में तजिया जुलूस में युवा सब देखलन हेरत अंग्रेज करतब। बाकरगंज में गंगा जमुनी तहरीर के मिसाल। अरसा के दिन हजरत आजम

0: को तवा हुई थी कबूल, इमाम हुसैन की शहादत भी इसी दिन मोहम्मद नसुद्दीन कहला। मोहर्रम पर प्रशासनिक शक्ति के बीच कतौ कतौ देखल गेल धारदार हथियार, या हुसैन के गुजत रहल गूंज। एहि संग मोहर्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न भेल। बिहार के फिल्म उद्योग में तेजी आयल। 2 वर्ष में 51 फिल्म के शूटिंग के लेल अनुमति भेटल। ई कला उत्थान के लेल विशेष अभियान चल रहा है बिहार में, जेहि में फिल्म के बहुत तरहक सहयोग बिहार सरकार द्वारा भेट रहा है। आओ बिहार, बिहार में फिल्म के शूटिंग करू और बिहार सरकार से सहयोग लिया। एहि संग हालचाल सम्पन्न भेल। नमस्कार।
1: तो प्रवीण जी, हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मौसम संबंधित। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 26 जून से 30 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर 27 से 29 जून के दौरान मेघ गर्जन एवं तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके प्रभाव से कहीं कहीं हल्की सी मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। इस दौरान औसतन अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के तापमान में 39 से 40% तक पहुँच सकता है और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। सुबह की सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर के सापेक्ष आर्द्रता 30 से 35% रहने का अनुमान है और पूर्वानुमान अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है।
0: इछल मौसम संबंध में किछ जानकारी कार्यक्रम के आगा बढ़ी और किछ गपशप कह ली।
1: तो आज हम लोग बात करेंगे प्रवीण जी कि शिक्षा पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव, शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव अगर देखा जाए तो यह हाल के वर्षों में भी काफी बड़ा है, क्योंकि इसे संयुक्त अन्वेषण में, संयुक्त खोजने में बढ़ावा मिलता है, जिससे पूरे विश्व के लिए आने वाली समस्याओं का निदान ढूंढा जाता है। साथ ही विश्व संस्कृति, विश्व पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु मिलकर एक मंच पर एक विश्व के विशेषज्ञ निधन खोजते हैं, यह कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी है।
0: निश्चित रूप से जे शिक्षा के मूलभूत बात जे वो बदल रहा है, एक वैश्वीकरण पर जे प्रभाव पड़े से देखल गेल है जे आब शिक्षा एक वैश्वीकरण भ गेल अछि। अहाँ जे तरह शिक्षा चाहे छी तो घर बैसल सेहो लऽ सकै छी और देश विदेश जाकर सेहो लऽ सकै छी। ई नीत तो पहिलो छले, पहिलो जे यात्री सब छला से शिक्षा दीक्षा संगे व्यापार सेहो करै छला है और ओहि सब से वैश्वीकरण के एकटा मजबूत स्तंभ बनले, पुरान बात छे। वही के आधार पर आब नव दुनिया भेल, स्मार्ट युग भेल। आब तो घर बैसल कोनो देश विदेश के यूनिवर्सिटी के शिक्षा दीक्षा के जानकारी अहाँ प्राप्त कर सकै छी, ओकर अनुभव लऽ सकै छी। अगर इच्छा अइ तो ओहिठाम अहाँ जाकर पढ़ियो सकै छी। ओहिमे घर से लऽ कऽ सरकार तक सहयोग कऽ रहल छै छात्र छात्रा सबके, और हेबाको किया नहि चाही। नव युग अइ, नव जानकारी भऽ रहल अछि, शिक्षा मे नव नव प्रयोग आबि रहल अछि। शिक्षा के नवीकरण हेतु 2020 मे नव शिक्षा नीति आयल अछि। जहन सब किछु नव नव हो रहल छै तऽ नव युवा के लेल नव संस्कृति परोसमे कोनो नीक बात होइ छै और ओहिके परिणामो नीके होइ छै। तैं नव शिक्षा के विश्व पटल पर जे प्रचार प्रसार भऽ रहल अछि ओहिमे संसार क्रांति के सबसँ पैघ महत्व होइ छै। आशा ई करै छी जे एहि संगे नव शिक्षा के जुड़ के लेल से सबसँ पहिले आइ काल्हि देखल गेलैया जे कोनो नव शिक्षा मे अहाँ कौशल विकास कते कऽ रहल छी, यानी शिक्षा में केवल डिग्री लऽ लेनाइ, प्रमाण पत्र लऽ लेनाइ, घर बैसनाइ ओ नहि छै मांग। वैश्विक स्तर पर एखन मांग छै स्किल के, प्रवीणता के, दक्षता के, निपुणता के, जे अहाँ में की गुण है।

गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। सच में गाँव तो निश्चित रूप से अनुपम होइत अछि, जन्मस्थान होइ छै तो और बहुत प्यारा भऽ जाइ छै। विश्व स्तर पर कतौ चलि जायब लेकिन गाँव के जे याद छै, बचपन के जे भूलते भागते क्षण छै, ओकरा कखनो नहि अहाँ बिसरि सकै छी। खास कऽ दू तीन समय जे अबै छै गाँव मे ओकरा बड़ा महग होइ छै। एखन ओ समय चलि रहल अछि, रंग बिरंग के आम से खटगर मिहटगर चहटगर एखन कलम गाछी मे पसरल रहैत अछि। जे किछु टहलल जाय दू चारिटा अहाँके अवश्य भेट जायत। तैं निश्चित

0: रूपसँ ओना शिक्षाके वैश्वीकरण भेलाके बाद से लोक गाम धीरे धीरे छोड़ने जा रहल अछि, ई कष्ट भऽ रहल अछि। वैश्वीकरणमे भेल गेल फायदाके बहुतो एहन छथि जे प्रयाससँ आबि रहल छथि जे स्टार्टअप लऽ कऽ अपना गाँव घरमे या ओहिके आसपासमे प्रारम्भ शुरू केला है। ई मिथिलाञ्चलके एकटा नव से देखल गेल अछि जे बहुतो जन एहन बाहरसँ देश विदेशसँ से शिक्षा दीक्षा लऽ कऽ ओकर गुणके आओर ओकर प्रचार प्रसारके लेल अपन उद्यमताके आगू बढ़बाके लेल अपना ओहिठाम अयला है, जे स्वागत योग्य कदम छै कि हमसभ बिहारी उत्तरवासी भारतके लोकसभ कि बाहरे जा कऽ खाली परिश्रम कऽ कऽ उत्थान कऽ सकैत छी, अपना ओहिठामके धरतीके उत्थान नहि कऽ सकैत छी कि? तऽ निश्चित रूपसँ ई सभटाके देन छै वैश्वीकरण जे शिक्षा नीति भेल ओकर। आब नव नव बच्चासभ नव जानकारीके लेल यदि ओकरा गार्जियन आ कनि सरकार सपोर्ट कऽ दै छै तऽ ओकरा शैक्षिक लोन भेट जाइ छै आ ओहि पैसाके जा कऽ ओ वैश्विक स्तरपर जतय ओकरा मोन होइ छै ओ शिक्षा लऽ कऽ ओतहो रहि जाइए। बहुतोके आत्माके आवाज सुनि कऽ अपना ओहिठाम आबि जाइए, यानि आ घर लौट चलें। तऽ ई जे एकटा दौर छै, ई पहिले कहलहुँ हेँ, ई वैश्वीकरण बदलि रहल अछि, शिक्षा नीति बदलि गेल छै, नव शिक्षा नीति वैश्वीकरण भऽ गेल छै। आब घर बैसल सेहो कोनो भाषाके जानकारी अहाँ प्राप्त कऽ सकै छी आ अपन भाषाके प्रचार प्रसार घर बैसल सेहो कऽ सकै छी। आ जखन ओहिठाम जा कऽ करब तऽ ओ तऽ प्रैक्टिकले भऽ गेल, ओना प्रायोगिक कोनो चीज नीक होइ छै, यानि ओना ज्ञान लऽ लेनाइ आ प्रयोग कऽ कऽ ज्ञान लेनाइ दुनूमे बड अंतर छै। डॉक्टर मुँहसँ कहिका लिख कऽ सर्जरी कऽ देतै, ओ विद्यार्थी ओतेक नहि बुझतै जे सामनेमे कोनो शरीरके चीर फाड़ि कऽ ओकरा एक एकटा अङ्गके अलग अलग कऽ कऽ देखा कऽ जोड़ि कऽ सुनि कऽ ओकरा जे गुणै छै उएह होइ छै प्रायोगिक। तऽ कोनो चीज प्रायोगिकमे दक्षता बेसी होइ छै, ई वैश्विक पटल पर देखल जा रहल अछि।
1: और प्रवीण जी, पूरे विश्व की अगर कई देश अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं और बहुत सी समस्याएं ऐसी भी हैं जो पूरे विश्व को अपने आगोश में ले रही हैं, इस तरह अगर शिक्षा का वैश्वीकरण होता है तो फिर पूरे विश्व के अनुसंधानकर्ता मिलकर उसे उस काम को करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले शिक्षा का वैश्वीकरण हो, यानी उसे तकनीकी पर, उसे टूल्स को, उसे तकनीक को पूरे विश्व के लोगों को पता चले, उस पर वह ध्यान केंद्रित कर अध्ययन करे और उस समस्याओं का निराकरण करे। आज विश्व में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसे बहुत से देश जूझ रहा है, आने वाले दिनों में और भी यह संकट गहरा हो सकता है। जैसे जल संकट की ही बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले दिनों में जल के लिए संकट होगा और इसके निदान हेतु आज ही अगर पूरे विश्व के लोग अगर लग जाएं तो ये एक अच्छी नीति साबित हो सकती है। इसके लिए शिक्षा का वैश्वीकरण होना एक लिहाज से देखा जाए तो अति आवश्यक है। शिक्षा के वैश्वीकरण होने से क्षेत्रीय परंपरागत चीज़ों का सहेजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर क्षेत्रीयता की भावना को भी सजे कर हम उसको बचा के रखें तो वो बची रहती है।
0: अनुपम बात कह रहल छी, यहाँ बहुत गुड गप कह रहल छी, जे वैश्वीकरण शिक्षा के प्रचार प्रसार में कहीं ई तो नहीं बढ़ रहल छै जे हमर जे विरासत है, हमर जे धरोहर है, हमर जे संस्कृत है, हमर जे आदिकाल से आवय वाला संस्कृत सब की ओ हमने तो भुला रहल छी। परिवर्तन तो शाश्वत नियम छै संसार के, ओ तो होते छै, लेकिन मूल भाव से एखनो आदमी जुड़ल अछि, ओ संजोने अपना में ओ संस्कृत के, ओ सभ्यता के, ओ कला के, ओ मान मर्यादा के, ओ पारिवारिक संस्कार के आ अपन अपन परंपरा के धरोहर के, एखनो ओ सभ्य समाज धरोहर जकाँ संजोने अइ और संजो रखबो के चाही। शिक्षा के अर्थे वएह छै, तै हम दोसर के संस्कृत के नहि बुझबै तो केना हेतै, यदि नहि बुझबै तऽ हमर ज्ञान केना बढ़त। तै ई वैश्वीकरण शिक्षा जे छै ओहिके लेल आवश्यक भऽ गेल छै। आइ दोसर संस्कृत, हम पहिले कहलहुँ हेँ, संचार तंत्रके माध्यमसँ हो या जन्ना होइ या जाक होइ, हम एक दोसरके संस्कृतके, सभ्यताके, साहित्यके आदान प्रदान कऽ रहल छी आओर वैश्विक स्तरपर हम विकास कऽ रहल छी। हँ, ओहिमे प्रश्न चीज कतौ कतौ लगै छै, एहिमे कि हमर जे अपन क्षेत्रीय संस्कृति अइ ओहिपर तनिक कुठारघात हैत, ई सभ्य समाज ओकरा जिया कऽ राखत आदिकालसँ रखने आओर आगाँ रखैत। लोक कहऽमे बाद बादमे कहि दै छै जे अहाँ से बेसी पश्चिमीकरण भऽ वाला शैली में अपना रहल छी जो आ रहल छी कोनो पश्चिमीकरण

0: मूलीकरण नहीं होइ छै। एकटा पढ़ल लिखल सभ्य आदमी के जेना जीवन यापन करबाक चाही ओ ओहिना जीवै छै। हाँ, भ सकैए ओ दोसर लेल से कोनो अवगुण परोसित होए, लेकिन ओकरा लेल ई बात नीके रहै छै। कहबाक तात्पर्य ई अछि जे ओझा लेके गाम बता आ गामक लेके ओझा बता। जे पढ़ि लिख गेलै गुणी भऽ गेल अछि निश्चित रूपसँ ओकर आहार व्यवहार सभ चीजमे अहाँके परिवर्तन बुझायत, तऽ किया नहि ओकर हम नकल करी, किया नहि ओकरासँ हम किछु सीखी जे हमरा ओ ज्ञानेटा देत आओर सङ्गे सङ्ग किछु अर्थो देत जे अहाँ आगू बढ़ू। किया तऽ शिक्षाके मूल भावसँ ओ जुड़ल छै आओर सभ्य मामला सभ्य समाज जाबत तक शिक्षित भऽ कऽ आगू बढ़ै छै ओतबे तक नीक लगै छै। यदि असभ्यता सङ्ग कुरीतिके सङ्ग कुप्रथाके सङ्ग एखनो हम जीवै छी तऽ हम सभ्य मानव कहबाक हकदार नहि भऽ सकै छी।
1: और अगर प्रवीण जी हम लोग क्षेत्रीयता की भावनाओं को भी सजेज कर उसको हम लोग बचा ले या बचा के रखें और फिर वैश्वीकरण के दौर में नई चीज़ों को सीखें तो यह हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा।
0: और संगे संगे यो कहब जे अहि युग में कै बेर चर्चा कलूँ संचार क्रांति यानी वो डिजिटल माध्यम है, तो एहि माध्यम में आब जे किस समस्या सब आबि रहल अछि ओना विज्ञान जते हमरा सबके आगू लऽ जायत तहिना विज्ञान हमरा सबके किछु किछु एहन दऽ दैए जाहिसँ हमरा सबके सबक लेबाक चाही। खास कऽ एहि युगमे आप देखल है जे डिजिटल युगमे नेटी टिकेटके की महत्व भऽ जाइ छै, यानि डिजिटल युगमे अहाँ डिजिटल माध्यमके कोना संचालन करी ओकर जानकारी पूरा प्राप्त कऽ कऽ ओकर नीक अदलाके ज्ञान अवश्य पहिले लऽ ली, किया तऽ ई तऽ समुद्र अछि एहिमेसँ जे मंथन करबऽ चाहबै अहाँके वएह भेटत। अहाँ ओहिमेसँ काँकोर निकालि कऽ खाय चाहबै तऽ ओहिमेसँ काँकरो निकलि सकै छथि, केओ शंख निकालि कऽ फूकऽ चाहता तो शंखो निकालि कऽ फूकि सकै छथि, आओर केओ ओहिमे जाकऽ मगरमच्छ मारि कऽ खाय चाहता ओहो भेटै छै, आ केओ दार्शनिक साहित्यकार कवि छथि ओ मात्र डूबै छथि शब्द रूपी मोती चुनऽ लेल, एक एकटा शब्द मोती चुनि चुनि कऽ आनै छथि, गहन चिंतनसँ ओ सभ्य समाजके लेल नीक चीज लिख कऽ रखै छथि, बादमे ओकरा लोक पढ़ैए गुणैए तऽ बुझै छथि नहि ओ नीक नीक ज्ञान दऽ कऽ हमरा सबके गेला है। तऽ एहि माध्यममे की हमरा सबके प्रयास करबाक चाही आगू गपशप करब, कार्यक्रमके आगू लऽ चलै छी आओर सबसँ पहिले सुनै छी आब फेर एकटा सुमधुर फिल्म सङ्गीत, तऽ आओ सुनी।

बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार। अल्लाह करे ये दिन यूं ही

काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जोखिम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत।

0: उत्तम सर्वोत्तम जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीवन के की महत्व होइ छे ओ केना जीवाक चाही और जीवन की धारा छे एकर जानकारी जिनका भ जाइए ओ बुझू जे अपना आप के बुझियो जे फल से लदल अहाँ वृक्ष भ गेल छी जखना जेना एखन आमक वृक्ष पाकल कचगर सबटा लागल अछि और सब झुकल अछि धरती के तरफ। यानी नम्रता के एकटा प्रकृति उदाहरण वह टा छै जे जतेक गुणी होइ छथि ओ ओतेक विनम्र भ कऽ धरती के तरफ आकर्षित होइ छथि। ओहिना शिक्षा दीक्षा सँ जीवन सँ जे पूर्ण भ जाइ छथि ओ जीवन के आनंद लै छथि। धारा तऽ छै सुख हेतै दुख हेतै तैं घबराए के नहि छै। जीवन तो है उसी का जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना भाव छै। जीवन में संघर्ष सबके करय पड़े छै। अहाँ कतबो व्यवसायी लोग छी किया नहि संघर्ष अहूँ के जीवन में अछि और क्यों श्रमिक वर्ग किया नहि छै संघर्ष ओकरो जीवन में छै। नदी धारा जेना भेदभाव नहीं करै छै दुनू किनार से टकरा के आगू बढ़े छै तखने धारा से कायम रहै छै। तहिना जीवन छै अहूँ सुख दुख के अनुभव लेते आगा बढ़ सकै छी। अहाँ चाहबै खाली हम घी मलिद्दा खाए आ एसी में सुतल रही से नहीं हैत। अहूँ के आवय पड़त दुखक धारा में अनुभव करय पड़त तखने सुख जे हैत से महान हैत। कही छै पहले दुख काटि लिए तो सुख निक लगै छै आ पहले यदि सुख काटि लेब तो दुख खराब लगै छै।
1: और प्रवीण जी देखा जाए कहीं ना कहीं जिसका जिसके जीवन में संघर्ष होता है जैसे कि हमने आपने कार्यक्रम के शुरुआत में इतिहास की बात की और जिसके जीवन में संघर्ष और थोड़ा सा कठोर होता है उसी का जीवन सुखमय और आनंदमय भी होता है। जो शॉर्टकट के माध्यम से बहुत जल्दी ऊपर चल जाता है उसको जल्दी नीचे गिरने में भी समय नहीं लगता।
0: बउआ जखन आग पर घेम को सोना बरकै छै तखने ना झमकुआ गाना बनै छै। जीवन में यदि संघर्ष ने तो अजगर भेल अजगर के की अर्थ बुझलिए अवश्य बुझेते हुए एक जगह बैस के जे आवे ओकरा लग में सुरे कहबे के गिर निगल के चिबाबे नहीं छे सीधे निगलिए जाए छे तो अजगर नहीं बनी। हाँ अपना जीवन के एकटा सार्थकता के गति दी और गतिशीलता जे छे से दुनू के द्योतक छे सुखो के दुखो के। दुखो अब तो ओकरा आत्मसात करू घबराए नहीं और सुख अब तो बेसी उत्साहित नहि और ओहि संग जीवन जे चलै छै तकरे आनंद छै आ ओ आनंदमे से तऽ महानंद निकलैत छै। तै सभक जीवन आनंदमय रहै तै जीवन के रहस्य जे छै ओकरा बुझनाइ सुननाइ आवश्यक छै। आधुनिक युगमे हमसब गप सब केलहुँ जे ई स्मार्ट दुनिया भऽ गेल अछि आब डिजिटल शिक्षाकरण भऽ गेल ओहिमे ओकर उपयोग आ दुरुपयोग दुनू भऽ रहल छै। आ खास कऽ एखन से फ्रॉडिज्म बेसी बढ़ि गेलै स्मार्ट फ्रॉडिज्म एकरा कहल जाइ छै स्मार्ट दुनिया के स्मार्ट फ्रॉडिज्म। तऽ ओहिमे सँ केना बची आइ काल्हिमे एहन एहन फोन आयत जे सारान पढ़ल लिखल महिला सब खास कऽ बेसी घबरा जाइ छथि एहन फोन कऽ देतनि जे घबरा कऽ ओ अनसर काम कऽ लै छथि आ पता चलने छनि हुनका मोबाइलमे जे धन सम्पत्ति नुकायल छनि से दुइए मिनटमे खाली भऽ गेलै एकटा OTP देलासँ। तऽ एहि सबसँ बची दुनिया आगू बढ़ि रहल छै चाँद सितारापर हमसब कब्जा करऽके कोशिश कऽ रहल छी। विज्ञान आगू बढ़बे करतै मानव विकास भऽ रहल छै ओहि सङ्ग हमरा सबके धारा सङ्ग चलक अछि एहि सङ्ग आजुक एहि अङ्कसँ हमरा
1: साथी कुशल को
0: दिअ आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार मिथिला, आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल त बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
0: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारे, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 8 होने ही वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण

0: सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर-टू-डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और

0: हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने चार और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए सातवां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले टी20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और केबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले

0: अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. and in football, two-time champion Uruguay crash out of FIFA.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासरा वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में दो बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और दो तरफा तआवुन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज़ वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।

0: इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की। इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुपहर 5:10 से सुन सकते हैं। आप हमारे ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम कल सुबह 9:10 पर भी नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 920 तक पहुंच गई है और तकरीबन 3,300 अफराद जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुन राजधानी के करीब इलाके में इन जलजलों के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वेनेजुएला में इन तबाहकुन जलजलों के बाद ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन एमिस्ताद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और कुदरती आफात की सूरत हाल में एक राहत मिशन है, जिससे वेनेजुएला के आवाम के साथ यगानगत का इजहार होता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई के तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे कल वेनेजुएला भेजे गए थे। ये तैयारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत का सामान लेकर गए हैं, जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला की आर्जी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के आवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संग मील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। ये शख्सियतें मुस्तकबिल के जबरदस्त मौकों पर यकीन रखती हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों को मदऊ किया कि वो सरगर्मियों में गहराई पैदा करें, इख्तिरा को रफ्तार दें और मुश्तरका खुशहाली के लिए मजीद सरमायाकारी करें, क्योंकि सेटा से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ये कहते हुए हमले किए कि ये हमले एक दिन पहले आबनाए हुरमुज में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्सेज ने ईरान में मिसाइल व ड्रोन लॉन्च किए जाने के मकामात और साहिली राडार तंसीबात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि अगर ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे नतीजे का सामना करना होगा। इस दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान इब्राहिम अलफकर ने कहा कि अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई इस मरतबा ज्यादा तेज और फैसला कुन होगी। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट्स में अलफकर ने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने देरपा अमन और सलामती के क्याम के मकसद से इसराइल और अमरीका के दरमियान अमरीकी सालिसी पर मबनी मुआहदे के फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। मुजवजा समझौते में जंगबंदी और जनूबी लबनान से हिजबुल्ला दस्तों को हटाया जाना और उसके सभी हमले रोकना शामिल है। समझौते के खाके का ऐलान करते हुए जनाब रूबियो ने इस मुआहदे को इस्तेहकाम की बहाली की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि यह पेशरफ्त चैलेंज से भरी है, ताहम इस वक्त उतनी ही नागुजीर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, माहे और शिमाली मशरकी भारत में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मशरकी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मर्दों के एफआईएच प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबक दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए। अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मेक्सिको के गॉडलाजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस

0: जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मर्तबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। यह मैच अमरीका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमरीका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए दो T20 बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शायर होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप ने वजी खारजा ए जयशंकर के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने हम मनसब चोहियोन के साथ दो तरफा बातचीत की खबर को अहमियत दी है। बातचीत के दौरान भारत और जनूबी कोरिया ने खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को और मजबूत करने के अज़्म का इरादा किया। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी और दाखिला अमित शाह ने मुंशियात के कंट्रोल पर विजन दस्तावेज 2026-29 और एनसीबी की सालाना रिपोर्ट 2025 का इजरा किया। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने 16वें भारत जापान सरबरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 1 जुलाई को जापानी वजी आजम के भारत दौरे की खबर पर तवज्जो दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। और FIH मर्दों के प्रोलीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपकी ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
4: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
3: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
4: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
3: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
4: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं।

हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक आवाज ही आपकी पहचान है।

नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस की कल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बनी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अधिनियम दूसरे राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित होगा। इसके लिए 15 राज्यों के विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का अध्ययन कर उनकी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए कुलाधिपति पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बाढ़, कटाव, जल जमाव, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत से संबंधित निर्माण कार्यों में इस योजना के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा जोखिम कम होने के साथ ही स्थानीय श्रमिकों को गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। मधुबनी और दरभंगा जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP शुरू किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर के संबंध में असेसमेंट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब विभाग CDP 2021 के तहत चयन कर कार्य शुरू करेगा। श्री सिन्हा ने बताया कि यह देश का 5वां क्लस्टर होगा। इस परियोजना से दरभंगा और मधुबनी के लगभग 20,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं केला, आम, लीची और मखाना आधारित मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाने के साथ ही बागवानी विकास को नई गति मिलेगी। प्रदेश में पीने के पानी के लिए अब सतही जल को प्राथमिकता दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने भूमि जल पर निर्भरता और उसकी निकासी कम करने के उद्देश्य से यह फैसला किया है। इस संबंध में केंद्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के पहले चरण में दक्षिण पूर्व बिहार के 8 जिलों भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और कैमूर को शामिल किया गया है। इन जिलों में भूजल स्तर अपेक्षाकृत कम है। इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सिवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित होंगी। प्रदेश के 211 नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी विभागीय पत्र को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया है। विभाग के निदेशक

एनके अग्रवाल ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि इससे पहले इन राजकीय महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के लिए यूजीसी के मापदंडों के अनुरूप नेट, जेआरएफ और पीएचडी की अर्हता प्राप्त सरकारी शिक्षकों की सूची प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का फैसला किया है। विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में विभाग को आवेदन न देकर प्रेस वार्ता करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है। श्री सिंह को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में मनोरोग विभाग में प्राध्यापक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अगले 3 महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इस अवधि में 8 जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश हो सकती है। वहीं शेष हिस्सों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। भभुआ और डेहरी को छोड़कर ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस अवधि में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे तक ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा।

होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। आज हेलेन केलर दिवस है। प्रतिवर्ष 27 जून को हेलेन केलर की जन्म स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विधान पार्षद सर्वेश कुमार और स्थानीय विधायक संजय गुप्ता मौजूद रहेंगे। इस बीच कल हेलेन केलर जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में परिषद और बिहार उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 25 दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की वैज्ञानिक पहचान और अधिसूचना हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया को राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करने और अनुशंसा करने में सहायता के लिए विकसित किया गया है। मानक परिचालन प्रक्रिया सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों, क्षेत्र आधारित आकलन और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देती है। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने खाजे डीह गांव के पास से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक देशी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। मुंगेर जिले के उर्दू चौक के पास वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 269 लीटर विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया गया है। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हरा दिया। भारत पर आयरलैंड की यह पहली जीत है। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 19 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। गौरतलब है कि इस मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम 11 में जगह नहीं मिल पाई। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 मैच कल खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सूबे में श्रेष्ठ प्रणाली आधारित नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, 5 से कम सदस्य होने पर अंत्योदय अन्न योजना के लिए घट सकता है अनाज आवंटन। प्रभात खबर ने मौसम की खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, 36 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश, 2025 की तुलना में बदला मॉनसून का रुख। दैनिक भास्कर लिखता है, वेनेजुएला में भूकंप से 589 मौतें, 50,000 अब भी लापता। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, बचाव के लिए आज का दिन अहम। राष्ट्रीय सागर ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर लिखा है, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। आज अखबार के शब्द हैं, बिहार के जिलों में बड़ा फेरबदल, 30 उपाधीक्षकों का हुआ तबादला। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस की कल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की,
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी,
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल, प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

उसके बाद आप सुनेंगे यौमी आशूरा के मौके से पटना सिटी में मुनक़िद प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शामी गरीबा। तकनीकी मुआवनत होगी अलक निरंजन सिन्हा और मृत्युंजय कुमार की, और इसको पेश करेंगे मन्नान अली। फिर आप सुनेंगे ड्रामा समाज के दुश्मन, तहरीर होगी नवेद हाशमी की और पेशकश होगी जमालुद्दीन साहिल की, और प्रोग्राम के आखिर में मौसीकी के तहत हम आपको सुनवाएंगे गज़लें। तो आइए शुरुआत करते हैं इरम फातिमा जन्नत के इस मुकद्दस कलाम के साथ।

0: कौन?
1: अरे रजिया भाभी आप आइए आइए। आज तुम ऑफिस से नहीं गई नागरी?
0: बस यही है, जरा तबीयत सुस्त थी।
1: जी जी तुम ऑफिस नहीं जाती हो, उस दिन अकेलेपन के एहसास से मेरा दम घुटने लगता है।
0: ये प्यार की मोहब्बत है रजिया भाभी, वरना इस जमाने में शहरी को बाहर ऐसा प्यार कौन देता है।
1: हाँ नादरा तुम ठीक कहती हो।
0: अच्छा हुआ आप आ गई,
1: कोई खास बात है?
0: आज दिन तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए कह रही थी।
1: तो टीवी खोलो ना, टाइम तो हो चुका है,
0: अभी खोलती हूँ।
2: आज गांधी मैदान में जहेद के खिलाफ आयोजित जलसे में श्री आरिफ ने अपने भाषण में कहा,
3: इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता कि अल्लाह ने औरत को मर्द के लिए ही पैदा किया है।
0: अरे
3: लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि मर्द उसे घर की चार दीवारी में कैद करके रख दे, अपनी हवस का शिकार बनाए और अनगिनत बच्चों की परवरिश करवाए। औरत को भी जीने का उतना ही हक है जितना कि एक मर्द को। हमें ये देखकर बहुत दुख होता है कि जहेज की रस्म आज भी हमारे समाज में आम है। जहेज जो समाज के बदन का खोल है, जहेज एक जहरीला नाग है जो हमारे देश की मासूम लड़कियों को डस रहा है। लेकिन इसका एहसास किसे है? इसके खिलाफ कौन नारा बुलंद करता है, कौन? मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें, स्कूलों कॉलेजों और दफ्तरों में नौकरी करें और खुद को इस काबिल बना लें कि जब कोई लड़का वाला उनसे जहेज की बात करे तो वो खुद जहेज की फरमाइश कर दें। उन्हें बता दें कि वो उनके लड़के से किसी तरह कम नहीं है, वो तालीम याफ्ता है, बरसरे रोजगार है।

0: लोग गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं। तुमने इस महान नेता की तकरीर सुन लिया ना?
1: हाँ हाँ, पर क्या हुआ? वो तो ठीक ही कह रहे थे।
0: वो क्या ठीक कहेगा नादरा, वो मक्कार है मक्कार। तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती।
1: ये क्या कह रही है रजिया बाजी? देश के इतने बड़े नेता को आप मक्कार कह रही हैं? अगर किसी ने सुन लिया तो जानती हूँ क्या होगा।
0: अब क्या होगा नादरा, जो नहीं होना था वो तो बहुत पहले हो चुका है, अब बाकी क्या बचा है होने को।
1: आप क्या कह रही है रजिया बाजी? ये तो मैं जानती हूँ कि आप अब तक कुंवारी हैं और जिंदगी के दिन बस यूं गुजार रही हैं, लेकिन मैं कुंवारी नहीं हूँ नादरा,
0: मैं कुंवारी नहीं हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि मैंने अब तक शादी नहीं की।
1: रजिया बाजी, होश के नखून लीजिए, इस कदर जज्बाती न बनिए कि जज्बात के रो में आपका सब कुछ बह जाए।
0: मैं होश में हूँ नादरा, मैं जज्बात के रो में नहीं बह रही हूँ, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ, हकीकत।
1: लेकिन मुझे यकीन नहीं आता रजिया बाजी, भला ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है?
0: आखिर तुम यकीन क्यों नहीं आता नादरा, ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। मेरी जैसी बहुत सी लड़की देश में मौजूद है जिनकी आबरू लूट कर उन्हें हालात के सलीब पर लटका दिया गया है।
1: आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है क्या?
0: हाँ।
1: आखिर वो बदमाश कौन है जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद की?
0: यही तुम्हारा महान नेता आरिफ।
1: और कौन? मुझे यकीन नहीं आता रजिया बाजी, ये तो औरतों का महबूब लीडर है। सिर्फ आम जलसों में ही नहीं बल्कि जमीन भी औरतों के हुकूक की पैरवी और जहेज के खिलाफ एहतजाज बलंद किया करता है।
0: ये सब ढोंग है, फ्रॉड है, दिखावा है। इसके पीछे भी इसका कोई ना कोई अपना मकसद जरूर होगा, वरना आज का कोई भी नेता आवाम की बेलौट से बच नहीं करता।
1: आपका मुशाहदा बिल्कुल दुरुस्त है रजिया बाजी, जब से लीडरों ने औरत के हुकूक की पैरवी और जहेज के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए हैं, औरतों का इस्तेहसाल और जहेज की रस्म और शिद्दत अख्तियार करने लगे। लेकिन खैर, आप आरिफ साहब के सिलसिले में कुछ कहना चाह रही थी?
0: हाँ, मैं तुम्हें अंधेरे से रोशनी मिलाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन लीडरों से कोई उम्मीद वाबस्ता रखना फजूल है। इनकी जुबान बेलगाम है, जो जिन्हें आता है कह देते हैं पर खुद उस पर अमल नहीं करते। ये उस जमाने की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और तुम्हारा ये महान नेता मेरा क्लास फेलो था।
2: हेलो रजिया, क्या बात है? रजिया तुम मुझसे खींची खींची क्यों लगती हो?
0: नहीं आरी, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
2: रजिया, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। रजिया, तुम खामोश क्यों हो? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती?
0: क्या जवाब दूं आरी, मैं खुद कुछ लाइफ नहीं पाती। मैं मामले एक कलर की बेटी हूँ और तुम एक अफसर के इकलौते बेटे हो, हमारा ये कभी नहीं हो सकता।
2: नहीं रजिया, नहीं, ऐसा ना कहो। मोहब्बत जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखती। इस कॉलेज में तुम्हारे अलावा बहुत सारी लड़कियां हैं जो आला घराने से ताल्लुक रखती हैं, इनमें से कई तो मुझे लिफ्ट भी देती हैं, लेकिन मेरा दिल इनकी तरफ नहीं झुकता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने सिर्फ मेरे लिए तुम्हें पैदा किया है और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रहिए
0: उस दिन में रात भर सो ना सकती थी, रात भर मैं आरिफ के बारे में सोचती रही थी। वो स्मार्ट है, खूबरू है, निर्दय है, मुझे चाहता है, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। वो अगर चाहता तो फरीदा से मोहब्बत कर सकता था, वो अगर चाहता तो निकट से मोहब्बत कर सकता था। शहनाज तो उस पर बुरी तरह फरेबता थी। वो खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, डेवलपमेंट थी, लेकिन उसने कभी शहनाज को लुफ्त न दिया, वो कभी लड़के के पीछे ना भागा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे चाहता है, वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। गोया मैं रात भर उसके बारे में सोचती रही और मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि वो मेरे लिए है, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। और मैं रफ्ता रफ्ता उसके करीब होती गई, वो मेरे करीब होता गया और फिर हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते गए।
1: गोया आप उसके जाल में फंस गई?
0: हाँ।
1: फिर क्या हुआ?
2: हेलो रजिया।
0: हेलो आरिफ।
2: मैं कॉलेज के लॉन में फूलों के दरमियान तुम इस तरह बैठी हो जैसे सुनमा रंग वाली कोई चिट्ठी।
0: हाँ तो अभी
3: हर वक्त तुम्हारा मूड सारा न

0: हुआ करता है। काम की बात कभी नहीं करते, पता नहीं तुम शायर ना होकर लीडर कैसे बन गए।
1: शायर, लीडर, काम की बात। बहुत खूब।
0: आरिफ, मैं एक बात सोच रही हूँ।
1: सिर्फ एक ही थी?
0: मजाक ना करो आरिफ, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ।
1: क्या बात है रजिया, तुम अचानक उदास क्यों हो गई?
0: अब हमें शादी कर लेना चाहिए।
1: अरे कर लेंगे, इसमें उदास होने की क्या बात है? आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? हमने मोहब्बत की है, एक दूसरे को चाहा है, पसंद क्या है?
0: तो फिर आज ही अपनी डैडी से बात करो, मैं भी अपने घर वालों को बता देती हूँ।
1: जरूर बता दो, लेकिन आज अचानक तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आ गया? तालीम खत्म करने के बाद हम शादी करते तो हमारे हाथ में ज्यादा बेहतर होता।
0: अगले माह हमारा फाइनल एग्जाम है, हम एग्जाम के बाद ही शादी करेंगे।
1: अच्छा,
0: लेकिन घर वालों को बता दें ताकि वो अपने इंतजाम में लग जाए।
1: ठीक है भाई, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं आज ही अपने डैडी से बात करता हूँ।
0: कई दिन गुजर गए और आरिफ कॉलेज नहीं आया तो मुझे तशवीश लाक हुई। एक अनजाना सा खौफ मुझे परेशान करने लगा। उसके कॉलेज न आने की वजह मेरी समझ में ना आई। कभी सोचती बीमार तो नहीं हो गया, कभी सोचती उसके घर वालों ने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया, फिर सोचती अगर उसके घर वाले रजामंद ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बासलाहियत और नेक खसलतों का हामिल है, वो खुद सर है, उसके सीने में प्यार करने वाला दिल है, वो मुझे बेहद चाहता है, वो जरूर किसी काम के तहत बाहर गया होगा, दो चार दिनों में आ जाएगा। तो क्या वो नहीं आया? आया तो फिर क्या हुआ? फिर क्या बात है आरिफ, कई दिनों से तुम कॉलेज ही नहीं आ रहे थे।
1: बस यही, कोई खास बात नहीं थी।
0: मैं बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
1: इंतजार क्यों?
0: मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, वो तैयार हैं। मेरे वालिदैन तुमसे मिलना चाहते हैं, आज शाम की चाय मेरे घर पर पियो। सुनो, माँ ने खास तौर पर ताकीद की है।
1: मुझे अफसोस है रजिया।
0: क्यों?
1: कुछ मजबूरी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
0: मुझसे शादी नहीं कर सकती?
1: हाँ रजिया, मुझे अपने ही तो फ्यूचर देखना है। तुम्हारे फादर एक मामूली क्लर्क हैं, वो मुझे जहेज में क्या देंगे? मेरे डैडी दूसरी जगह मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, वो लोग काफी दौलतमंद हैं।
0: गोया तुम्हें भी जहेज चाहिए?
1: क्यों नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, खूबसूरत हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे डैडी एक ऑफिसर हैं, और आजकल तो जहेज वो ले रहे हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती। क्या मैं एक रिक्शा चलाने वाले से भी क्या गुजरा हूँ?
0: पिछले दिनों कॉलेज के फंक्शन में तुमने औरतों के बुनियादी हकूक की हमायत और जहेज के खिलाफ कितनी अच्छी तकरीर की थी। तुमने नौजवानों को जहेज के खिलाफ उकसाया था, उनसे वादा लिया था कि वो जहेज के खिलाफ काम शुरू कर दें, और अब तुमने
1: देखो रजिया, ये मेरा जाती मामला है, ये जरूरी नहीं कि जो मैं कहूँ इस पर खुद भी अमल करूँ।
0: और वो अहदो पैमा?
1: वो तो वक्ती था, दिलबस्तगी के लिए।
0: और मेरा कुंवारा पर?
1: बेकार की बातें ना करो रजिया, वो जवानी का एक खूबसूरत खेल था जिसे हम दोनों ने मिलकर स्टेज किया था। अगर तुम अपने तुम्हारेपन का दावा कर सकती हो तो मैं भी अपने तुम्हारेपन का दावा कर सकता हूँ, इज्जत मर्द की भी हुआ करती है।
0: ऐसा न कहो आरिफ, ऐसा न कहो, औरत और मर्द की इज्जत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा आरिफ, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आरिफ, मैं कहीं की न रह पाऊंगी, मुझ पर तरस खाओ आरिफ, मुझे तबाह होने से बचा लो आरिफ, बचा लो।
2: तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला रजिया, मैंने फैसला कर लिया है और मेरा ये फैसला अटल है, अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश न करना।

0: जिंदा दरगोर हो गई नादरा।
1: तो ये बात है, आपने इस सिलसिले में फिर कुछ नहीं किया रजिया बाजी?
0: क्या कर सकती थी नादरा, मैं करीब और कमजोर लड़की भला क्या कर सकती थी। और फिर हमारे समाज में हमेशा मर्दों को सुरखरू, औरत को हकीर समझा है।
1: लेकिन अब ऐसी बातें नहीं रजिया बाजी, अब समाज

0: ने हमें बराबरी का हक दे रखा है। हम जिंदगी के हर शोबे में मर्द के शाना बशाना चल रहे हैं।
1: ये तुम्हारी खुशफहमी है नादरा, तुम नेताओं की तकरीर, अखबारात और रसाइल की बुनियाद पर ऐसी बात कर रही हो, वरना औरतों का इस्तेमाल आज भी उरूस पर है। तुम क्या समझती हो, स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में नौकरी करने वाली औरत इस्तेमाल का शिकार नहीं?
0: इनका इस्तेमाल कैसे मुमकिन है रजियाबा जी?
1: ये तो अपने अपने तौर पर महसूस करने की चीज है नादरा। मैं जिसे इस्तेमाल समझती हूँ, मुमकिन है तुम उसे कोई और नाम दे रखो।
0: जैसे?
1: मैं बताती हूँ, एक दिन मैं दफ्तर गई, उस दिन मैं गुलाबी रंग की साड़ी और ब्लाउज पहन रखा था। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, वैसे भी मैं कभी मेकअप नहीं किया करती थी। उस दिन मैं जाने की मेरा चेहरा कुछ निखरा निखरा सा था। दफ्तर में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी भूखे शेर के पिंजरे में आ गई हूँ। चपरासी से लेकर बड़ा बाबू तक मुझे भूखी निगाहों से देखते रहे और फिक्रे कसते रहे, और मैं अंदर ही अंदर खोलती रही, और जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं उठकर बॉस के चैंबर में चली गई। मैं अंदर आ सकती हूँ सर?
2: जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्या बात है रजिया?
1: क्या आपके दफ्तर में कोई शरीफ लड़की काम नहीं कर सकती सर?
2: क्यों नहीं, बात क्या है?
1: आप अपने स्टाफ को जाकर समझा दे कि वो मुझे हर वक्त छेड़ते रहते हैं।
2: सिर्फ छेड़ते हैं ना, और तो कुछ नहीं करते।
1: ये आप क्या कह रहे हैं सर?
2: ठीक कह रहा हूँ रजिया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, कसूर तो तुम्हारी जवानी और खूबसूरती का है। दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों को इस तरह का कभी कोई ख्याल नहीं करना चाहिए।
1: ये आप क्या कह रहे हैं सर?
2: मैं ठीक कह रहा हूँ रजिया, अगर प्रमोशन की ख्वाहिश होगी तो कभी दफ्तर के बाहर मुझसे मिल लेना, डबल प्रमोशन दे दूंगा।
1: सभी दफ्तर का यही हाल है। अब ऐसी सूरत में हमारे देश का कोई नेता या अफसर जो खुद औरत को बिस्तर की चादर समझता है, वो अगर औरत के हकूक और उसके तहफुज की बात करे तो क्या हंसी नहीं आएगी फिर?
0: हाँ रजियाबा जी, आप ठीक ही कह रही हैं।
1: अच्छा नादरा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई।
0: अच्छा, खुदा हाफिज। खुद
3: ड्राइवर, जरा गाड़ी रुकना।
4: रजिया, अरे हो रजिया।
3: अरे शहनाज तुम? हाँ हाँ मैं, तुम तो अपनी सहेली को एकदम भूल ही गई। कॉलेज छोड़ने के बाद एक दिन भी याद नहीं किया। मैं तो समझ रही थी कि तुम इस शहर में नहीं हो, शादी करके कहीं और चली गई, वरना मैं तुमसे जरूर मिलती।
4: ये तुम्हारी मोहब्बत है शहनाज, वरना कहाँ मैं और कहाँ तुम।
3: बेकार की बातें न करो रजिया। अच्छा अब ये बताओ, तुम कैसी हो और तुम्हारे शौहर क्या करते हैं? अब तक कितने बच्चों की माँ बन चुकी हो तुम? माशाल्लाह, अब तो तुम्हारे बच्चे भी जवान हो गए होंगे।
4: मैंने अब तक शादी नहीं की शहनाज।
3: क्यों?
4: बस यूं ही समझ लो कि जिंदगी का सुख मेरे मुकद्दर में नहीं था। अच्छा छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ कि तुमने कहाँ शादी की और जिंदगी के दिन कैसे गुजर रहे हैं।
3: तुम आरिफ को जानती हो ना?
4: कौन आरिफ?
3: अरे वही जो हमारे क्लास फेलो थे और अब बहुत बड़े लीडर हैं।
4: हाँ, उसे भला कौन नहीं जानता, आज टीवी पर उनका प्रोग्राम देखा था।
3: वो मेरे शौहर हैं और और उन्हें बीबी बच्चों से ज्यादा अपनी सियासत प्यारी है।
4: गोया तुम उससे खुश नहीं हो?
3: छोड़ो फिर बातों को, मैं जरा जल्दी में हूँ, अगले हफ्ते मेरी बेटी परवीन की शादी है। अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। ये लो कार्ड, शादी में जरूर आना, अगर नहीं आओगी ना तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, और नहीं तुम मुझे अपनी सहेली समझती ही हो।
4: ऐसा न कहो शहनाज, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: कोशिश नहीं, वादा करो।
4: अच्छा बाबा, वादा करती हूँ, जरूर आऊंगी।
3: ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। बाय बाय।
4: बाय बाय शहनाज। गोया आरिफ ने शहनाज से शादी की थी और अब शहनाज उससे खुश नहीं है। आरिफ को बीवी बच्चों से ज्यादा सियासत प्यारी है। उसने सिर्फ दौलत के खातिर शहनाज से शादी की थी और जब दौलत

0: मिल गई तो बीवी बच्चे चूल्हे में जाए, क्या फर्क पड़ता है लालची कमीना।
1: आओ रजिया, बहुत देर कर दी तुमने, मैं तो नाउम्मीद हो गई थी। सोच रही थी कि सब मेहमान आ गए हैं, पर रजिया अब तक नहीं आई, वो नहीं आएगी क्या?
0: जब वादा कर लिया था तो आने ही था शनाज।
1: अच्छा सुनो, बारात आ गई क्या?
0: अभी नहीं, बस आती ही होगी। परवीन कहाँ है?
1: अपने कमरे में सहेलियों के साथ बैठी है। चलो मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ।
0: चलो
1: परवीन, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी आंटी रजिया, मेरी बहुत पुरानी सहेली।
2: हेलो आंटी।
0: हेलो परवीन।
2: आप इसी शहर में रहती हैं क्या रजिया आंटी? मैं मम्मी की सभी सहेलियों को जानती हूँ, लेकिन आपको पहली बार देख रही हूँ।
0: रहती तो इसी शहर में हूँ परवीन, लेकिन मैं ये समझ रही थी कि शहनाज इस शहर में नहीं है, वरना जरूर मिलती।
2: अब आप बराबर आया कीजिएगा ना आंटी।
0: हाँ हाँ, जरूर आया करूंगी।
1: चलो रजिया, हम हॉल में चलते हैं।
0: आरिफ कहाँ है, नजर नहीं आ रहे?
1: अपने दोस्तों के दरमियान बैठे शराब पी रहे हैं।
0: मैं शराब?
1: हाँ हाँ शराब, शराब उनके लिए हराम नहीं है।
0: मेरा मतलब हराम हलाल से नहीं है, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि उनकी बेटी की बारात आने वाली है और वो इत्मीनान के साथ शराब पी रहे।
1: सच पूछो रजिया, तो मैंने आरिफ से शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मुझसे ज्यादा सुखी तो मेरे घर की नौकरानी है, जो अक्सर मुझे अपने शौहर की मोहब्बत वफादारी के किस्से सुनाया करती है और उसके गुण गाया करती है।
3: भाई अब शराब नोशी बंद, अब हम सब पंडाल में चलेंगे, बारात के आने का वक्त हो गया है। अरे रजिया, तुम यहाँ कैसे आ गई?
0: मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ, ये तो मेरी खुशनसीबी है। क्या तुम इसी शहर में हो? मुझे तो पता ही नहीं था, वरना तुमसे जरूर मिला होता। इंस्पेक्टर।
4: यस सर।
3: कोठी को चारों तरफ से घेर लो।
4: यस सर।
3: मिस्टर आरिफ, आपको गिरफ्तार किया जाता है।
4: मुझे?
3: जी हाँ आपको। ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड और ये आपका वारंट।
4: K.N. गुप्ता, CBI ऑफिसर। मिस्टर गुप्ता, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा जुर्म क्या है?
3: बेशक, आपके खिलाफ ये रिपोर्ट है कि आपने मुल्क और कौम को लूट कर बेशुमार दौलत जमा किया है और अब आप अपनी बेटी को जहेज में इस काले धन से खरीद कर इम्पोर्टेड कार, इम्पोर्टेड फ्रिज, हीरे जवाहरात के जेवर और दिगर बेशुमार एशिया दे रहे हैं। क्या ये संगीन जुर्म नहीं? जबकि आप खुद बहुत बड़े लीडर हैं, आपको एक मिसाली आदमी होना चाहिए था।
4: मिसाली आदमी, बहुत हो। मिस्टर गुप्ता, क्या आप जानते नहीं कि मैं खानदानी दौलतमंद हूँ? मेरे फादर बहुत बड़े ऑफिसर थे और मेरे फादर इन लॉ बहुत बड़े बिजनेसमैन। और ये कि मेरे खिलाफ ये गलत रिपोर्ट मेरे मुखालिफ ग्रुप का एक हथकंडा भी तो हो सकता है, ताकि मैं बदनाम होकर अवाम की निगाहों से गिर जाऊं और वो अपना उल्लू सीधा करें।
3: मिस्टर आरिफ, आप एक सियासतदान हैं, मुल्क के खास रुकन, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि CBI डिपार्टमेंट जब तक मुकम्मल छानबीन नहीं कर लेता कहीं छापा नहीं मारता। आपकी कोठी चारों तरफ से घेर ली गई है, अब आप अपनी सफाई कोर्ट में पेश करेंगे। इंस्पेक्टर, आरिफ साहब को वैन में ले चलो और घर के सारे सामान को सीज कर लो।
5: ओके सर, चलिए मिस्टर आरिफ साहब।
4: देखिए मिस्टर गुप्ता, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, आज शादी हो जाने दीजिए, कल मैं खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा।
3: मुझे अफसोस है मिस्टर आरिफ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
4: ऐसा न कहिए मिस्टर गुप्ता, ऐसा न कहिए, मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए, प्लीज मिस्टर गुप्ता, प्लीज।
6: आरिफ, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
4: तुमने जो कुछ भी सुना है ठीक ही सुना है शहनाज, मैं अरेस्ट कर लिया गया हूँ।
6: नहीं आरिफ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता।
2: क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? आखिर बात क्या है?
6: तुम्हारे डैडी अरेस्ट हो गए परवीन। अरेस्ट?
2: अरेस्ट, लेकिन क्यों?
0: ब्लैक मनी के जुर्म में।
2: ब्लैक मनी? ये आप क्या कर रही हैं रजिया आंटी?
0: हाँ परवीन, ब्लैक मनी।

0: नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप कह दीजिए डैडी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है डैडी, ये सब झूठ है।
1: ठीक हो जाएगा परवीन, ठीक हो जाएगा, नहीं रो बेटा।
2: अरे बात क्या है, ये घर मातम खुदा क्यों बना है भाई?
3: हम लूट गए भाई साहब, बर्बाद हो गए। पुलिस ने और इसको अरेस्ट करके जहेज के सारे सामान को सीज कर लिया है।
2: सामान सीज कर लिया, लेकिन क्यों?
3: ब्लैक मनी के जुर्म में।
2: तो ये बात है भाई, बारात वापस ले चलो, ये शादी नहीं होगी। बिना जहेज के शादी कैसे कर सकते हैं?
3: ऐसा ना कहिए भाई साहब, ऐसा ना कहिए। बारात लौट गई तो हमारी नाक कट जाएगी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी भाई साहब।
2: गोया मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं? आखिर मेरा बेटा भी अफसर है, क्यों आ रहे साहब? ठीक कह रहा हूँ ना?
4: मैं आपके आजू होता हूँ ताहिर साहब, प्लीज शादी हो जाने दीजिए। मैं बाद में लिस्ट के मुताबिक सारा सामान दे दूंगा।
2: लिस्ट के मुताबिक? मिस्टर आरिफ, आप अपनी जबान बंद कीजिए। इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी आपके होश ठिकाने नहीं आए, आप फिर मुझे जहेज का लालच दे रहे हैं? आरिफ साहब, मैं आपकी तरह जहेज के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जहेज कितनी बड़ी लानत है, और इस जहेज ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। लेकिन मैं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने कभी आपसे जहेज की फरमाइश नहीं की आरिफ साहब, मैं गरीब आदमी जरूर हूँ लेकिन लालची नहीं हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद है, मेरे लिए एक काफी है। ये शादी होगी, अभी होगी और इसी वक्त होगी।
5: अदाब भाईजान।
2: अरे रजिया, तुम घर क्यों नहीं आई? अम्मा और तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। अब्बा भी तुम्हें याद कर रहे थे, इन दिनों काफी बीमार है। ननद और भावत का झगड़ा तो मशहूर है भाई, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम घर ही छोड़ दो और माँ बाप भाई बहन सबको भूल जाओ। सुनो, दुल्हन को साथ लेकर तुम हमारे साथ घर चलो, समझे?
5: अच्छा।
2: अरे साहब, ये मेरी छोटी बहन रसिया है, इसी शहर में रहती है। अच्छा भाई चलो, निकाह का इंतजाम करो।
6: आप सुन रहे थे ड्रामा समाज के दुश्मन, तहरीर थी नवेद हाशमी की और पेशकश थी जमालुद्दीन साहिल की। सामीन हजरात, हमारे स्टूडियो की घड़ी ने इशारा दे दिया है प्रोग्राम को आज यहीं अख्तिताम पसीर करने का। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने मुतय्यन वक्त पर आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए यहीं इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम।

आनंद बख्शी का लिखा ये प्यारा सा गीत संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म थे आन मिलो सजना, गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी। कोई नजराना लेकर आया हूं मैं दीवाना तेरे लिए। सच में दिन भर आपकी ताजगी बनी रहे, आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके, यही तो ख्वाहिश होती है हम सबों की। और दिन भर आपकी ये ऊर्जा बनी रहे, इसलिए प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये नजराना लेकर हाजिर होते हैं हम आपकी सेवा में। एक बार फिर आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब से लेकर सुबह 10:30 तक फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आपके लिए। सुनिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत सचिन देव बर्मन का है। फिल्म का नाम है चुपके चुपके, गायक कलाकार लता मंगेशकर।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। अंतराल से पहले हम आपको सुनवा रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया वो गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म गदर से। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। तकदीर फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी का गाया हुआ। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मुझे तुम याद आए। भाई इन यादों का क्या, ये तो बिन बुलाए कभी भी चले आते हैं। ये यादें कभी हमें हंसाते हैं तो कभी हमें रुलाते हैं। यादों का ये सिलसिला ता उम्र हमारे साथ चलता रहता है। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, अपनी ही चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। आज आप सुनेंगे दोपहर 1:15 से। लीजिए अब सुनिए जसपाल सिंह को, फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

सावन को आने दो इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कलाकार थे जसपाल सिंह। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम।

इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी दरभंगा से अब समय हो चला है भक्ति संगीत का।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। आज जिन कलाकारों के गाए भक्ति गीत हमने आपको सुनवाए वे थे पुरुषोत्तम दास जलोटा और जगजीत सिंह। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

कुमार शानू और आशा भोसले की, और इस गीत को संगीत से सजाया था नदीम शवन ने और गीतकार थे समीर। तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
2: बाल समय रवि भक्षी
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 पर। श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं कार्यक्रम नारी संसार की ओर और मिलते हैं आपकी रेडियो सखी श्वेता से।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सखी श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज शनिवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको सुनवाएंगे कुछ नए पुराने भूले बिसरे फिल्मी गीत और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज यानी 27 जून को विश्व भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि MSME दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस उन छोटे छोटे उद्योगों और उद्यमों को महत्व को रेखांकित करता है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहनों, जब हम किसी छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प इकाई, सिलाई कढ़ाई केंद्र, खाद इकाई या घरेलू उद्योग की बात करते हैं तो ये सभी MSME के अंतर्गत आते हैं। ये उद्यम न केवल लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं बल्कि स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज करोड़ों लोग अपनी आजीविका के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों पर निर्भर हैं। यही कारण है कि MSME क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अनेक महिलाएं घर से ही अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं। कोई अचार, पापड़ और मसाले बना रही हैं, तो कोई सिलाई बुनाई, हस्तशिल्प या फिर ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार के द्वारा भी महिलाओं और युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऋण सुविधाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ती है बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि होती है। MSME केवल व्यापार का माध्यम नहीं बल्कि नवाचार, आत्मनिर्भरता और विकास का प्रतीक है। यदि हमारे आसपास के छोटे उद्यम सफल होते हैं तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और क्षेत्र का समग्र विकास होता है। बहनों, आज के डिजिटल युग में छोटे व्यवसाय भी ऑनलाइन माध्यमों से

अपने उत्पाद देश और विदेश तक पहुंचा रहे हैं। ये नए भारत की बदलती तस्वीर है, जहां छोटे सपने बड़े अवसरों में बदल रहे हैं। तो चलिए बहनों, चर्चा आगे और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

आई बहनों, आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। विषय है गर्मी के मौसम में कैसे करें पशु पक्षियों की देखभाल। बहनों, प्रचंड रूप में गर्मी चल रही है और ऐसे में हम लोग तो खुद की देखभाल कर लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पी लेते हैं और हर किसी को ये कहते हैं कि पानी भरपूर पीना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी ये ध्यान नहीं देते कि हमारे साथ साथ जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन्हें भी जल की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस मौसम में वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। जगह जगह जहां पानी स्टोर होता है, छोटे छोटे गड्ढों में या छत पर, इन सब जगहों पे पानी गर्मी की वजह से सूख जाता है। तो ऐसे में क्या है कि पक्षियों को बड़ी मुश्किल होती है पानी पीने में। तो इसी से संबंधित एक कुछ विचार हैं जो हमने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए। तो आइए सुनते हैं मेरे उन विचारों को एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं श्वेता। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो संवेदनशीलता, मानवता और पर्यावरण तीनों से जुड़ा है। विषय है गर्मी के मौसम में कैसे करें पशु पक्षियों की देखभाल। श्रोताओं, गर्मी का मौसम केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बेहद कठिन होता है। तेज धूप, बढ़ता तापमान और पानी की कमी उनके जीवन के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में हमारा छोटा सा प्रयास भी किसी बेजुबान की जान बचा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पक्षियों की। गर्मी में उन्हें पीने का पानी आसानी से नहीं मिल पाता, इसलिए अपने घर की छत, बालकनी, आंगन या खिड़की के पास मिट्टी के किसी बर्तन में रोज साफ और ताजा पानी जरूर रखें। इसके साथ ही थोड़ा सा खाने का दाना भी रखें। ध्यान रहे कि बर्तन का पानी रोज साफ करें और पानी बदलते रहें ताकि वो दूषित ना हो। अब बात करते हैं पालतू पशुओं की। यदि आपके घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता या अन्य पालतू पशु हैं, तो उन्हें धूप में लंबे समय तक ना बांधें। उनके रहने की जगह हवादार और छायादार होनी चाहिए। उन्हें दिन भर स्वच्छ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। गर्मी में उनके चारे के साथ हरा चारा भी दें और समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेते रहें। श्रोताओं, यदि आपको सड़क पर कोई पशु बहुत अधिक प्यासा, घायल या बीमार दिखाई दे तो उसे पानी पिलाने का प्रयास करें। यदि स्थिति गंभीर हो तो स्थानीय पशु चिकित्सालय या पशु सहायता संस्था को सूचना दें। गर्मी के दिनों में बच्चों को भी पशु पक्षियों के प्रति दया और संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाएं। उन्हें बताइए कि रोज एक कटोरा पानी और थोड़े से दाने रखने से कई पक्षियों का जीवन बचाया जा सकता है। ये एक छोटा सा कार्य है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण केवल पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है। पशु पक्षियों की रक्षा करना भी हमारा सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करते हैं तो हम प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो चलिए इस गर्मी में एक छोटा सा वादा करते हैं कि हर घर के बाहर एक कटोरा पानी और थोड़ा सा दाना अवश्य रखेंगे। अपने आसपास के पशुओं को भी पानी पिलाने का प्रयास करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इसी संदेश के साथ आज एक छोटी मुलाकात से मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन याद रखिए कि मानवता की पहचान केवल इंसानों के प्रति प्रेम नहीं बल्कि बेजुबान जीवों के प्रति

0: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गांव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सम्मान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों, गर्मी अपने प्रचंड रूप में है, गर्म हवाएं यानी कि लू, ये हर किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ऐसे में स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। तो कोशिश करें कि जहां तक हो सके बेवजह घर से ना निकलें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं, सर को बाहर जाते समय ढककर रखें, छाते का प्रयोग करें, आंखों के लिए धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। पहनावा बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना पहने, बल्कि पहनावा कोशिश करें कि बिल्कुल ढीला हो और सूती कपड़े पहने। सूती कपड़े पहनने से शरीर से निकलने वाले पसीने को आसानी से सुखाया जा सकता है, जिससे कि घरौनिया, घमौरिया, खुजली ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। कई बार देखा जाता है कि रैशेस हो जाते हैं शरीर में, एकदम खुजलाते खुजलाते निशान पड़ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचाव हो जाता है। अगर आप ज़्यादा नायलॉन और टेरिकॉट के कपड़े पहनेंगी तो ये समस्या बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उसमें तो पसीना सूखता नहीं है। कोशिश करें कि घर के बाहर के भोजन को ना करें। कई बार ऐसा होता है कि घर के बाहर का भोजन करने से पेट संबंधित समस्याएं, गैस की समस्याएं, दस्त की समस्याएं सामने आती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, खाना बहुत ज़्यादा गरिष्ठ और मसालेदार नहीं खाना चाहिए। घर का ताज़ा खाना खाएं और कोशिश करें कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाएँ। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी का सेवन करें। आजकल तो बाज़ार में बहुत सारे फल मिल रहे हैं, तो जो भी मौसमी फल हैं जैसे खीरा, ककड़ी, जामुन, तरबूज, इन सब चीज़ों का सेवन करें। ये शरीर में पानी की कमी को नहीं होने देते, उनकी पूर्ति करते हैं। तो बहनों, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग गर्मी के मौसम में लू से खुद को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं और ख़ास करके विशेष तौर पर अपने बुजुर्गों को भी सही तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो हमारे ऊपर आश्रित होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम उनका विशेष ध्यान रखें। तो चलिए बहनों, बातें आते आगे बहुत सारी होंगी, लेकिन इसके पहले लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम।
0: के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
3: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पर पार्क बनवाया जो है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया जो है, कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों, वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हर चर्चा में हमारी गर्मी और गर्मी से बचाव के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। अभी अचानक से कोई ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम लोग यही सोचेंगे, अरे जाने दो ना, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, क्या दिक्कत है, चलो काम करना है, कौन करेगा काम, और सोचेंगे झटाझट निकल जाएंगे घर से बाहर। ये याद नहीं रहेगा कि हमें अपना फेस कवर करना है, सिर पर छाता भी लगाना है, थोड़ा आँख पर चश्मा भी लगा लें या पानी का बॉटल साथ में रख लें, और बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि थोड़ा सलाद खाएँ और सलाद में कच्चे प्याज का सेवन करें, क्योंकि कच्चे प्याज के सेवन से लू नहीं लगती, गर्मी से बचाव होता है। तो बहनों, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन आमतौर पर रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। जानकारियां तो सबके पास विशेष तौर पे होती हैं।

0: कमी बस यहीं पे है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो बार बार कहने में आता है कि पानी खूब पिए, भरपूर मात्रा में पानी पिए, या पानी से संबंधित जितने भी चीज़ हैं, फल हो, हरी सब्जियां हो, नारियल पानी हो, छाछ, ये सारी चीज़ों का सेवन करती रहें, क्योंकि आपको आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो मुश्किल बढ़ जाएगी। आप ये ना सोचें कि प्यास नहीं लगाया कैसे पानी पी ले, प्यास का इंतज़ार नहीं करना है, जब मन करे बस पानी उठाया, बातचीत कर रहे और एक गिलास पानी पी लिया, इसकी कोशिश आप करें। तो चलिए, इससे ये तो चीज़ें हैं ही, इसके साथ ही साथ आम का जो पन्ना होता है, जिसे कि हम लोग अमझोरा कहते हैं, इसका सेवन भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आम, कच्चा आम कई मायने में फ़ायदेमंद है, जैसे कि अगर लू लग जाता है तो आप इससे उबाल कर पूरे शरीर में इसकी मालिश करें, सिर में भी लगाएं, चेहरे में भी लगाएं, थोड़ी देर को छोड़ दें और उसके बाद आप एकदम सादा पानी से नहा लें जाकर नल के नीचे। शरीर की जितनी भी गर्मी है, जितना भी लू लगा हुआ है, जितनी भी परेशानी है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, गर्मी निकल जाता है, बुखार नहीं होता, सिर में दर्द नहीं होता इससे। और इससे जो हम लोग पन्ना बनाते हैं, वो पन्ना भी बेहद फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आम का पन्ना बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए उसे आप नोट कर लें। आम पन्ना बनाने के लिए चाहिए हमें 2 से 3 कच्चे आम, 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी या गुड़, जो भी पसंद हो, स्वाद के अनुसार आप ले सकती हैं, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, साधारण नमक स्वाद के अनुसार, 8 से 10 पुदीने की पत्तियां, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना पुदीने की पत्ती की भी बनती है, लेकिन पुदीने में एक गुण होता है जो कि इसमें थोड़ा सा पेपरमिंट का स्वाद होता है, ये पेट को ठंडक पहुंचाता है, पेट में जो गैस है, मरोड़ है, उन सब चीज़ों को दूर करता है, इसलिए पुदीने की पत्तियाँ इसमें डाली जाती हैं। और एक छोटा चम्मच आप काला नमक ले सकती हैं, और उसके बाद आप ठंडा पानी ले लीजिए, घर में बर्फ़ है तो बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसे बनाने के लिए जो विधि है वो बहुत ही आसान, साधारण और फटाफट बनने वाली विधि है बहनों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आम को धो लेना है और इसको कुकर में उबाल लेना है। अगर आप उबाल नहीं सकती हैं तो आप इसे आग पे घुमा घुमा करके आराम से मधीम आँच पर इसको आप भून लीजिए अच्छी तरीके से, फिर इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने पर आप इसका छिलका हटाकर इसके गुदे को निकाल लीजिए। गुदे में आप चीनी या गुड़ मिला दीजिए, भुना हुआ जीरा, काला नमक और सादा नमक मिलाकर अच्छी तरह से इसे मसल लें, या फिर इसे मिक्सी में पीस लें, फिर इसे इसमें ठंडा पानी मिलाकर आप इसे मनचाहे तरीके से बना सकती हैं। आपको अगर पसंद है गाढ़ा बना के रखना तो आप गाढ़ा बना के रखिए, या फिर इसमें पानी और डाल दीजिए, ये पतला हो जाएगा, तो आप इसे पी सकती हैं। गाढ़ा बना के रखने में भी एक फ़ायदा है, आप इसको स्टोर कर सकती हैं गाढ़ा बनाने में, और फिर जब आपका मन करे तो 2 चम्मच निकाला, ग्लास में डाला, ऊपर से एक गिलास पानी डाला, उसको अच्छे से मिला लिए और फिर पी लिए, तो ये क्या है कि इंस्टेंट तैयार हो जाता है। और बाकी अगर पतला करके पीना है तो जब आपको पीना है तो फिर पूरे प्रोसेस में आना होगा कि कच्चे आम को उबाले, मसले, मसाले मिलाए और उसके बाद पिए। तो दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आप फिर इसमें पुदीने की पत्तियां पीस कर मिला दें, अगर घर में उपलब्ध है तो। ठंडा पानी डालें, बर्फ़ डालें और लीजिए, फिर तैयार है आपका बहुत ही अच्छा एक पेय पदार्थ, जिसे पीकर आप गर्मी के मौसम में राहत पा सकती हैं, लू से बच सकती हैं। शरीर में ये तुरंत ही ऊर्जा देता है और ताजगी देता है, और सबसे बड़ी बात है कि पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। तो बहनों, बिहार में हमारे ये अमझोर्रा या अमझोर्रा शरबत, जिसे कि हम लोग आम का पन्ना कहते हैं, बेहद लोकप्रिय पेय पदार्थ है, जिसको कि गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार आप भी बनाइए, आप भी पीजिए और हमें अपने पत्रों के माध्यम से बताइए कि यह आम का पन्ना आपको पीने में कैसा लगा। तो श्रोता बहनों, अगर आप चाहें तो कार्यक्रम संबंधित सुझाव आप हमें पत्र के माध्यम से भेज सकती हैं, अपने व्यंजन की रेसिपीज भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, आज बातें बहुत हुई, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ी ज़रूरत है मनोरंजन की। तो एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी प्यारा संगीत।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित, हिंदुस्तान के सही

0: योग से राज भटकाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार ग्राम पंचायत राज भटकाई और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाए, स्कूल में चार दीवारी करवाए। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: खड़ी इशारा कर रही है कि चलो श्वेता, वक्त हो चला है अपनी श्रोता।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार

किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की आपको जानकारी दे दें।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: जिंदगी कैसी है बहेली हाय,
0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय।
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

फिल्म पूरा व पश्चिम से लिए गए इस देशभक्ति गीत को भी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी मन्ना डे की। तो श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है आपके पसंदीदा कार्यक्रम यानी फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आपकी रेडियो दोस्त चंदना के साथ।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आपकी रेडियो हमसफर चंदना आपके ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ। तो आप सभी श्रोताओं का आपकी रेडियो दोस्त चंदना का प्यार भरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफर का इस पहले गीत के साथ, इस पहली पसंद के साथ जो आई है फुटानी चौक नारायण स्टेट से। भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, मिश्रा मोहल्ला नरहन बाजार से बीके मिश्रा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा, ललू सुरगनैया, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरभ और शाइना शर्मा। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबना राज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, चांदनी नाज, लाली साफी। एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर से, मध्य प्रदेश से रेखा संतोषी रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, ललिता नारायण खर्चे। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद किया है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाव खड़ से, ललिता खड़ से, परी खड़ से और प्रयाग चौधरी, स्वाति चौधरी। तो आइए सुनते हैं ये गीत। ये गीत है फिल्म मैंने प्यार किया से लिया गया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल आवाज में। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो कि आपकी पसंद है।

बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। तो चलिए अब अगले पसंद की ओर चलते हैं, जो कि है फिल्म हीरो से लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा गीत। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश जाजुरिया, गीता रानी जाजुरिया, गगनदीप जाजुरिया, बेबी आरजू जाजुरिया, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, देतरंगी से भागवत वर्मा, पुणे से पंकज बोर्डे, आर्या आदि, बीटी बोर्डे और चंद्रप्रभा बड़ुदे, झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरेराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी। और इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं अकरम नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूमनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख, कोताहा बिहार से शेख जफर जहां हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसौल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अहिबा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजमिल बाबू। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं फिल्म सिटी मुंबई से मंजीत गुप्ता, सोनी गुप्ता, बेबी हैप्पी, गोल्डी, लालिया और गुट्टू भाई, ओल्ड लिसनर ग्रुप राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, मास्टर तन्मय राज, रुद्र प्रताप गुप्ता। और यही गीत सुनना चाह रहे हैं ऐशबाग लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, पलक गुप्ता।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरो से, और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, और इस प्यारे से गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। आइए वक्त चलते हैं अगले पसंद की ओर, और ये है, ये पसंद आई है फिल्म हम है राही प्यार के से, जिसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने, और इसके गीतकार हैं समीर। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं वार्ड नंबर 5 भगवतीपुर पंचायत से विनोशा अकेला, प्रिंस कुमार, श्रीमती मीना शाह, आदित्य कुमार, संतोष शाह, ज्योति देवी, बेबी देवी, लक्ष्मी कुमारी, मुस्कान कुमारी, ज्योति कुमारी, राहुल कुमार गुप्ता, साक्षी कुमारी, रेणु कुमारी, रोशन कुमार, अरुण प्रसाद गुप्ता, लाल शाह दीवाना, इनामत टोल भगवतीपुर बिहार से नूतन सहनी, रासो देवी, कंचन सहनी, रिंकू देवी, बबीता सहनी, रुचि कुमारी, कोमल सहनी, निशू कुमारी, नव्या सहनी, एस के सहनी, सुधा, विवाहा, ज्योति, पार्वती, त्रिपुरारी सहनी और संतोष कुमार सहनी। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं राजनगर चांदनी चौक से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, शिवराज, आशुतोष राज और सोनू कुमार गुप्ता, मेन मार्केट राजनगर से श्री किशोर नायक, कन्हैया नायक, ललन नायक, शिवम नायक एवं सोनू ठाकुर। यही गीत सुनना पसंद कर रहे हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम कुमार और बुल्की वाली फलना झा, साथ में रिया रानी। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म हम है राधे प्यार के से।

ये गीत था फिल्म जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, कुमार शानू और अलका अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। और इस गीत को संगीत दिया था बाबुल बोस ने और लिखा था नक्श लैलपुरी ने। और इस गीत को सुनना पसंद किया था सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाईकारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिकी, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे थे नाहर मंटोला भाग से भाई कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, लेतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद किया था कैनरा मोहल्ला पटी

चित्रकला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, पलक, नितिन, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे थे टावर चौक आशापुर दरभंगा बिहार से अमरलाल मनोहर, दुलारीलाल मनोहर, सुंदरलाल मनोहर, प्रेमलाल मनोहर। आइए तो श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आपको सुनवा रही हूं आपके पसंदीदा गीतों को। तो चलिए सुनते हैं ये अगली पसंद जो आई है भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे। लुधियाना पंजाब से अमनजीत सोनम कौर, परमजीत अविद्या कौर। बिहारी कॉलोनी मदमहा मसूदन से वली अल्लाह फकीर, डब्लू अल्लाह फकीर, प्रवीण आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। साथ ही साथ इसी गीत को हम सुनना चाह रहे हैं शाहजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन लाल, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। साथ ही साथ बिहार कॉलोनी से परवीन डोम, सफरुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सुमन थापा, रेशमा थापा और अदीबा थापा। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और अल्लाह आसराम आसमा बेलदार। और ये सभी सुनना चाहते हैं

ये गीत है फिल्म आतिश से लिया गया अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में, और इस गीत को गाना पसंद सुनना पसंद कर रहे हैं। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। साथ ही साथ डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजिए गज भैये, राधिका गज भैये, बेबी अंशिका, तन्मय गज भैये। महाराजा रेडियो श्रोता संघ से जिला खांडवा लाल लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। साथ ही साथ ताजपुर मोरबा से भाईकारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, ललन मिश्रा ढोरी सकरा से जयंत कुमार बैरागी। आइए।

0: तो श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी अब इजाज़त दे रही है कि आप हमसे अब हम आपसे विदा ले लें। तो आप इसी तरह से हमें पत्र लिखते रहिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

बिहार सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल मुंगेर के चयनित पंचायत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज हेलेन केलर दिवस है। प्रतिवर्ष 27 जून को हेलेन केलर की जन्म स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विधान पार्षद सर्वेश कुमार और स्थानीय विधायक संजय गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में भी कई स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। अररिया जिले में जिलाधिकारी विनोद दुहन की उपस्थिति में एनआईसी के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फोन चलाने के आरोप में एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां एडिशन होगा। प्रोग्राम का नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म दफ्तर और वज़ारत इत्तला'आत व नशरियात के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा नशरिया होगा। मन की बात प्रोग्राम का नशरिया प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके फौरी बाद मैथिली जुबान में इसका नशरिया आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी नशरिये को दोबारा रात 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मरकजी वजीर देही तरक्यात शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में कौमी देही तरक्यात कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। 2 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में बिहार समेत सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खितों के देही तरक्यात के वज़रा, सीनियर अफसरान और माहरीन हम जहद देही तरक्की के मौजू पर इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अहम प्रोजेक्टों का जायजा और देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के तवसुस से मरकज़ और रियासत मिलकर गांव की तरक्की की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे। मरकजी वजीर सेहत और ख़ानदानी फलाह जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में सेहत के शोबे से वाबस्ता कई डिजिटल पहल का आगाज़ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रोत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और हेल्थ स्टैंडर्ड शामिल है। इनका मकसद मुल्क में डिजिटल सेहत खिदमात की तौसी करना और सेहत खिदमात को मज़ीद मुअस्सर और आसान बनाना है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से कल रियासत के मुख्तलिफ मराकज पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती इम्तहान का इनेकाद किया जाएगा। 993 ओहदों के लिए होने वाला ये इम्तहान 2 नशिस्तों में होगा। मशरकी वस्त रेलवे इस इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए आज और कल 13 इम्तहान स्पेशल ट्रेन चलाएगा। दानापुर डिवीज़न की जानिब से आज पटना के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हुकूमत बिहार की पहल पर महकमा पंचायती राज की जानिब से अब हर महीने के आखिरी इतवार को रियासत के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का इनेकाद किया जाएगा। इस पहल का

0: कानों से जब टकराएं सुरों की शीतल फुहारें,
1: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ, प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: बजकर 10 मिनट पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
1: बाल समय रवि भक्षिलियो तब
2: हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार बस कुछ ही देर में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है, दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
5: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
3: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
6: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है। एक ऐसा देश जिस

0: कि वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IFCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण

0: प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में

0: गठन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 235.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं को फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।
2: कीजिए दिन का आरंभ

फिल्म प्रेम ग्रंथ का ये गीत अलका याग्निक और सुरेश वाडकर ने मिलकर गाया। आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अभी आपने सुना फिल्म प्रेम ग्रंथ, मैंने प्यार किया, जीना मरना तेरे संग, लाल दुपट्टा मलमल का और राजकुमार से लिए गए गीतों को। गायक कलाकार थे अलका याग्निक, सुरेश वाडेकर, SP बाला सुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल, अनुराध कुमार शानू, मोहम्मद अजीज़, राधा मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति। आइए श्रोताओ, आप वक्त हो रहा है हमारे प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं राजस्थानी गीत प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में।

मीडियम वेव 230.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक लिए आज्ञा दें।

0: डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
1: भाती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: बताओ तो जरा, भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
1: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
1: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है, उनके

0: व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
1: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा।
0: ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो। अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
1: मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
0: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
1: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
0: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
1: आई एम सो सॉरी उमा।
0: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
1: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: शुक्रिया।
1: मुझे आज्ञा दो।
0: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताक के रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: पूरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जस्ता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोत कर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरास्तार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है,

0: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक ही करके पूछिए ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भर्ती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिख कर दे दिया है।
4: भारती, तुम?
3: अच्छा, तो ये बात है।
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
3: सुना आपने?
4: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
3: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
4: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
4: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले

0: पढ़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है। आप चिंता छोड़िए मामा जी।
1: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
0: क्या, क्या हुआ मामा जी?
1: सीनो,
0: मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
1: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
0: ले जाइए, ये लीजिए पानी। भगवान, दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: हेलो डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो। ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा भाई ये अट्टहास कैसा? हद है भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक मजाक छोड़ो माँ। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई? जानम्मा
2: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा
1: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं, ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: इसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊँ भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
1: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
0: वो क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।

0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं। हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों, सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं। बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ, जाना ही चाहिए। तुम साथ नहीं जाती? अच्छा, क्या आजकल भी गए हुए? तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप है ना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ। अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी। नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर, जरूर आना। मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक पूछता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: अब पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
4: चलो चलो
1: कंपाउंडर, वो बस ले आ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गाँव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी? कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
5: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
5: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखती हूँ कौन है।
5: रात के 10 बज चुके हैं।
4: डॉक्टर अम्मा,
1: अरे नागमणी तुम, क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
4: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
4: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
5: जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
4: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
1: चलिए चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए डॉक्टर ने धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है?
3: अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे।
0: कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
4: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
6: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
5: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
8: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
7: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने एक दो तीन चार नहीं बल्कि 5000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973
3: में
2: हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था, दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है। तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी, उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो
2: जी। तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे।
2: अच्छा।
3: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड।

0: पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते
0: नहीं,
1: थे।
0: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे,
0: यही काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: था।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था। अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं था,
1: पैसा मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया, और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था, मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी,
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूबा।
1: महबूबा।

0: इस बीच माता पिता से बात होती रही, क्या उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप शंकर जी के सानिध्य में रहे? कैसे?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना कैंटीन में खाओ खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे? कुछ
1: लगभग 250 गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था।
0: लेकिन
1: अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियां ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा।
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है। मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाती,
0: ऊर्जा आ जाती थी।
1: हाँ, लगता था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन होता
0: कि
1: था
0: कि कभी हमारा भी ऐसा घर होगा,
1: कभी हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था। वहाँ एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा।
1: अब वो पैसे
0: कौन देता था
1: वो, या वो क्यों नहीं लेता था ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार साहब के प्रति ना,
1: इस
0: दीवानगी में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि भूख प्यास भी होती है ना आदमी को। तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे
0: जी।
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रही उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए
0: जी।
1: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे
0: जी। खैर ये तो
1: कहीं ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
0: जो हसरत साहब जैसा होगा,
1: उनके जैसा हो सकता है
0: जी,
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
1: जी,
0: साहब
1: जी,
0: को।
1: जी, बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन

0: कहें पहले
1: जी। एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का
0: जी।
1: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी, बताइए। क्योंकि ये मेरे करियर का, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए, जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंदराज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था, यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की।
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा, और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए, ये भी नहीं आएगा। क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था, तो मुझे

0: बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
1: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
0: नहीं,
1: वो कोई और था।
0: वो कोई और था।
1: जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
0: जी।
1: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी, तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बहुत, बड़े लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
1: अच्छा।
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
1: अच्छा।
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
1: अच्छा।
0: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा।
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है, बोले कल आओ हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले। मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया।
1: अच्छा।
0: जी। और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तक किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे बहुत शानदार, तो, और लेजेंड से
0: उनका
1: थे
0: तो क्या कहना।
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं
0: तो
1: से सीखा।
0: वाला थे
1: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनिया वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाएं, उसके बाद गली बनवाएं, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाएं, उसके बाद रोड बनवाएं, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहां उभार कर मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त भारती।
4: नमस्कार दोस्तों, और मैं हूँ आपकी दोस्त अस्मिता। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर जो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो साथ ही कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे।
3: हाँ हाँ अस्मिता, साथ ही हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन गाने भी। दोस्तों, इन दिनों गर्मी चरम पर है, जानती हैं या नहीं अस्मिता?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तेज धूप, बढ़ता तापमान और लू से बचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे मौसम में अधिक से अधिक पानी पीजिए, हल्के सूती कपड़े पहनिए, और बिना जरूरत दोपहर की तेज धूप में बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए,
4: और अपने साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रखें।
3: तो आइए श्रोताओं, ऐसी कुछ ठंडक भरी बूंदे हम पर भी गिरे, ऐसा एक गाना सुनते हैं लगान फिल्म से।

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक।
1: तो दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहें तो MSME डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे उन छोटे और मझोले बिजनेस वालों का थैंक यू डे है जो हमारे आसपास दिखते हैं।
0: स्मिता, आप बात कर रही हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे के बारे में।
1: बिल्कुल,
0: ये चाय की टपरी से लेकर लोकल कपड़ों के ब्रांड्स तक और गली के नुक्कड़ वाली किराने की दुकान से लेकर नए नए कूल स्टार्टअप्स तक ये सब MSME के दायरे में आते हैं।
1: बिल्कुल भारती, एम यानी माइक्रो, ये वो छोटे खिलाड़ी हैं जो बहुत कम पैसे जैसे कुछ लाख रुपए लगाकर अपना काम शुरू करते हैं, जैसे आपकी फेवरेट चाट वाली दुकान या बुटीक।
0: बिल्कुल, और एस यानी स्मॉल, थोड़े बड़े वाले जिनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर करोड़ों में होता है लेकिन

0: टीम अभी भी छोटी और टाइट होती है।
1: बिल्कुल भारती, एम यानी मीडियम, ये वो हैं जो अब मझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। इनका बिजनेस अच्छा खासा फैल चुका होता है।
0: हाँ हाँ स्मिता, हर साल 27 जून यानी आज ही के दिन, इस दिन पूरी दुनिया इन छोटे बिजनेस वालों को सलाम ठोकती है। सलाम उनको करना ही चाहिए, क्योंकि वे ये वो जॉब है जो मशीन देश में सबसे ज्यादा नौकरियां यही लोग पैदा करते हैं। कॉरपोरेट कंपनियां तो बाद में आती हैं, पहले यही लोग युवाओं को मौका देते हैं।
1: बिल्कुल, लोकल को बनाते हैं ग्लोबल, हमारे देश की बनी चीजों को दुनिया भर में पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है भारती।
0: हाँ दोस्तों, असली आत्मनिर्भर बिना किसी बड़े गॉडफादर के अपने दम पर रिस्क लेते हैं और मार्केट में छा जाते हैं।
1: तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो भले ही छोटे दिखते हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी का असली इंजन यही है। अगर ये थम गए तो देश थम जाएगा, इसलिए इनके जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है MSME डे।
0: तो दोस्तों, आगे हम सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना।
2: ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किल दिल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना। और दोस्तों, आज का सेगमेंट जो स्टार्टअप सैटरडे है, उसमें हमने बात की है अंशु शेखर जी से। तो स्टार्टअप सैटरडे में आइए, उनसे क्या बातचीत हुई है सुनते हैं।
1: आकाशवाणी पटना में स्वागत है, और आप अपने बारे में भी कुछ बताइए।
2: शुक्रिया मैडम। मेरा नाम अंशु शेखर हुआ और मेरे स्टार्टअप का नाम जो है शेखर टेली सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हुआ। और मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मेरा जो रहा है वो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। और करने के तत्पश्चात जो है 2016 में प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट होने के बाद हम जॉब के लिए गए, लेकिन तभी जो है आपको स्टार्टअप इंडिया करके एक लॉन्च हुआ, प्रोग्राम लॉन्च हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें कि कहा गया कि किन्हीं के पास जो भी आइडिया है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो इंटरप्रेनरशिप करना चाहते हैं और एक उद्यमी बनना चाहते हैं, वो अपना आइडिया लेके आवे और डाले। यदि आइडिया में दम रहेगा तो आपको 100% जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट होता है स्टार्टअप को लेके, वो आपको मिलेगा। 2016 में हमने अप्लाई किया। हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली हम क्या स्टार्टअप कर रहे हैं पहले उसको बता देते। तो हमारा स्टार्टअप है दो सेक्टर में है। पहला सेक्टर हमारा जो ऑटोमेशन सेक्टर है। ऑटोमेशन मतलब हम लोग IoT बेस्ड सिस्टम बनाते हैं कई तरह के, जैसे कि आप पंप कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं, जो कि बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो टैंक लगे रहते हैं जिससे पानी सप्लाई पूरा बिल्डिंग में जाता है, तो हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं IT सिस्टम। उससे क्या होता है ना कि सारे बिल्डिंग का जो पंप है वो ऑटोमेशन ऑटोमेट हो जाता है। उससे क्या होगा, किसी भी बिल्डिंग का यदि पानी खाली होगा ना, तो उसका सेंट्रलाइज मैसेज जहाँ भी जो भी उनका जो ऑपरेटर होंगे वहाँ पे, उनको मिल जाएगा कि कब आपका किस टंकी का, किस बिल्डिंग का टैंक खाली हुआ है, किस बिल्डिंग में जो है कुछ फॉल्ट हुआ है, वो टाइट आपको मैसेज मोबाइल पे प्लेस हो जाएंगे। और यदि मान लेते हैं कोई ए ब्लॉक बिल्डिंग है उसका पानी खाली होता है, तो मोटर ऑटोमेटिक चालू होगा, उसका भी मैसेज आ जाएगा इनके पास कि इतना बजे आपका टंकी चालू हुआ है, और जब बंद होगा उसका भी मैसेज आ जाएगा। मतलब एक सेंट्रलाइज आपका ऑटोमेशन हो जाएगा एक तरह, जहां पर आप देख सकते हैं कि कब आपको चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार जाके प्रत्येक बिल्डिंग का अलग अलग मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लेते हैं आपने दिमाग से हट गया वो चीज कि आपको कि चला दिए हैं, आपको दिमाग में नहीं रहा। और पानी क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, जितना देर पानी ओवरफ्लो होता है वाटर का तो आपका वो हार्समेंट है। हाँ, प्लस क्या है ना कि आपका एनर्जी भी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग्स होते हैं वो कम से कम 2 HP 1 HP का मोटर होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी बहुत जाता है। प्लस क्या होता है, पानी ओवरफ्लो करने के बिल्डिंग का जो होता है उसका जो बेस होता है वो भी बहुत कमजोर होता है। तो ये सब सारे चीज का एक ही सोल्यूशन हमने उसको बनाया। उसको बना के हमने ये जब आइडिया को डाला तो शॉर्ट लिस्टिंग हमारा हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिला, क्योंकि उनका फंड का जो क्राइटेरिया कुछ लंबा था, जिसमें हम स्टार्ट किए थे 2017 में स्टार्ट किए थे इसको। लेकिन उसी समय बिहार गवर्नमेंट का भी स्टार्टअप आया हुआ था, स्टार्टअप बिहार पॉलिसी आया था। अच्छा। उसमें भी हमने इस आइडिया को डाला, तो वहां से हमें फंडिंग मिली। बाकायदा 10 लाख की फंडिंग, सीट फंडिंग मिली 10 साल के लिए। इंटरेस्ट फ्री रहेगा आपका, 10 साल तक बिजनेस कीजिए, बिजनेस करने के बाद जो भी आप।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं और हम उपस्थित हैं आपकी सेवा में सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी।

आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी में आप सभी युवा श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। ऊर्जा, उत्साह, सपनों और संभावनाओं से भरे देश के युवा मित्रों को हमारा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं भरपूर मनोरंजक गाने और साथ ही कुछ चर्चा। चर्चा हम ऐसा करते हैं जिससे आप लाभान्वित होते हैं। समसामयिक विषयों पर चर्चा होती है, कुछ आपके करियर से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा होती है। आज भी आप ही के करियर से संबंधित चर्चा का विषय है, MSME और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। जी हाँ, हम इसी विषय पर आज चर्चा भी करेंगे, लेकिन आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं एक मधुर गीत के साथ। आप बने रहें हमारे साथ अगले एक घंटे तक।

श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये गीत अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं अपने चर्चा की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज चर्चा का विषय है MSME और युवाओं के लिए

रोजगार के अवसर। सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा हमारे लिए कि एमएसएमई है क्या और इसका महत्व क्या है, क्यों है। तो श्रोताओं, एमएसएमई का अर्थ है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये ऐसे उद्योग या व्यवसाय होते हैं जो अपेक्षाकृत कम पूंजी और संसाधनों के साथ संचालित किए जाते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कुछ सालों से आप सुनते होंगे कि हमारे देश में स्टार्टअप पे बहुत जोर दिया जा रहा है। तो ये स्टार्टअप की मूलभूत संरचनाओं में से एक है, यही एमएसएमई। छोटे पैमाने पे कम लागत में आप अपना उद्योग लगाइए, सरकार बैठी है आपकी मदद के लिए और आप अपना उद्यम शुरू करने के साथ साथ साथ ही कुछ बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऐसे उद्योग या व्यवसाय होते हैं जो बहुत कम पूंजी से आप शुरू कर सकते हैं और देश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, निर्यात और स्वरोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है। इससे आप भी मजबूत होते हैं, आपका समाज मजबूत बनता है और साथ ही आपका देश भी मजबूत बनता है। इस तरह से ये स्वरोजगार के भी अवसर पैदा करते हैं। आज के युवा पढ़ाई लिखाई में कहीं से कम नहीं, लेकिन नौकरियों की एक सीमा है, एक लिमिटेशंस है। तो उस स्थिति में एमएसएमई के द्वारा आप अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं और खुद की बेरोजगारी दूर करते हुए अपने अगल बगल आजू बाजू के बेरोजगार युवकों का भी सहारा बन सकते हैं। इस विषय पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, किंतु हम आपका मनोरंजन भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं एक और बढ़िया सा गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विभा सिन्हा के स्वर में ये मिथिला नगरिया लोकगीत। इससे पहले जो गीत आपने सुना वो गा रहे थे ओम प्रकाश सिंह एवं अरविंद कुमार झा। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे MSME विषय पर। ये दोस्तों माइक्रो इंटरप्राइजेस, इसको भी हम आज के मानदंड के हिसाब से तीनों को, जैसे सबसे पहले इसमें आता है MSME में माइक्रो इंटरप्राइजेस, उसके बाद आता है स्मॉल इंटरप्राइजेस लघु उद्योग, और उसके बाद मध्यम उद्योग। तो इस तीनों में आज के मानदंड के हिसाब से आप देखेंगे तो सूक्ष्म उद्योग बहुत ही कम पूंजी से शुरू होने वाला उद्योग होता है। MSME का पहला जो सूक्ष्म उद्योग है वो यही है, और ये इसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो बहुत ही कम, कुछ लाख से लेके करोड़ दो करोड़ तक में ये आप कारोबार आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद जो सरकारी डेटा है वो है लघु उद्यम का, जिसको स्मॉल इंटरप्राइजेस बोलते हैं, वो आता है माइक्रो के से ऊपर स्मॉल, और सबसे हेवी जो आता है वो मीडियम इंटरप्राइजेस में आता है, जिसमें बहुत अधिक पूंजी की, बहुत अधिक मैन पावर की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में आता है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, विनिर्माण जिसको बोलते हैं, सर्विसेस सेवा, व्यापार, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण जिसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, वो भी आप लगा सकते हैं, है अपने लोगों के देहात में भी आप देखेंगे सब्जियों को, फलों को ताज़ा रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज सब बनवाए जाते हैं जिसमें रखा जाता है, और इस सीज़न की जो सब्जियां होती है वो अगले सीज़न तक वहां से निकाल निकाल के फुटकर विक्रेता ले जाके हमारे अब तक पहुंचाते हैं। तो ये कृषि आधारित उद्योग में आता है जो आप कर सकते हैं, या छोटे छोटे जो भी कृषि संबंधित विकसित तकनीकी के लिए जो भी मशीनरीज है उसके कल पुर्जे भी आप बना सकते हैं, और उसकी भी आप फैक्ट्री डाल सकते हैं, और ये सब वही सूक्ष्म माइक्रो से लेके स्मॉल तक में आ जाता है। तो श्रोताओं आप देख लीजिए, आज युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए खुले हुए हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग वाला, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप ले सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर, आप देख रहे हैं कितना पॉपुलर है ये बिजनेस आज के डेट में, क्योंकि कोई एक हैंड ऐसा नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, और वो भी स्मार्ट मोबाइल ना हो, और जहाँ मोबाइल है वहाँ सर्विसिंग चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए, रिचार्ज चाहिए, चार्जिंग चाहिए। तो ये बहुत ही एक हाई डिमांडिंग बिजनेस आपके लिए साबित हो सकता है, और ये सब MSME में ही आता है, जिसको आप भी घर बैठे शुरू कर सकते हैं। गारमेंट्स इंडस्ट्री में जा सकते हैं आप, रेडीमेड गारमेंट्स में जा सकते हैं, डेयरी और पोल्ट्री व्यवसाय आप देख लीजिए, अपने यहाँ बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में भी आप सुदूर देहात चले जाइए, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म मिलेंगे जहाँ मुर्गों का पालन होता है, मुर्गियों का पालन होता है, और उसे एक साइज़ पे लाने के बाद बेच के, और वो किसान

जो भी व्यवसाय करने वाले हैं अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, हस्तशिल्प है। साइबर कैफ़े आप देख लीजिए, बहुत ही पॉपुलर हो गया। साइबर कैफ़े आप खोलिए, हर तरह का जो भी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक लोगों के बहुत सारे काम जो साइबर कैफ़े से पूरा होते हैं। वहाँ आप आईटी सेवाएं देते हैं, ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण। तो युवा अपनी रुचि और योग्यता, स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार व्यवसाय को आप चुन सकते हैं। आप देख लीजिए आपके अगल बगल किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का डिमांड है, उसका आप इंडस्ट्री, उद्योग या सेवा क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं और अपने बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं। अपना ही नहीं, साथ ही आप अपने साथ वाले बेरोजगार युवकों को का भी बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं। चर्चा समय बचा तो आगे भी करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं एक बहुत ही बढ़िया गीत।

श्रोतो, राधा मोहन मिश्र के गाए इस गीत के साथ ही युवाणी के आज के इस अंक को समाप्त करने के दीजिए इजाजत। कल इसी वक्त फिर एक नए अंक के साथ होगी आपसे मुलाकात।

युवावाणी, ये था युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको इंतजार होगा नए फिल्मों के गानों का, तो आइए सुनते हैं।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे हमने लिया है फिल्म चंदू चैंपियन से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह, नक्कास अजीज और देव नेगी ने। अमित भट्टाचार्य की रचना है और प्रीतम का संगीत। तो सुनते हैं फिल्म चंदू।

सोनू निगम को भी आप सुन रहे थे, फिल्म थी डंकी। जावेद अख्तर ने इसकी रचना की थी और प्रीतम ने इस गीत का संगीत दिया था। और आइए प्रोग्राम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास का ये गीत। इस गीत को गाया है विश्वास और सुवर्णा तिवारी ने, सुमन विश्वकर्मा के बोल हैं और संजीव आनंद का संगीत। तो सुनते हैं फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास का ये गीत।

0: विश्वास और सुवर्णा के गाए फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास के इस गाने के साथ ही नए फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण

0: सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। स्थानीय सूचनाओं के अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं आज के शेष और कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में।

श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम काम घर हम आप तक पहुंचाते हैं प्रतिदिन संध्या 6:30 पर एवं किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी शाम 7 बजे से।

महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे अब से कुछ देर बाद, अर्थात शाम 6:10 से। मैथिली संवाद शाम 6:25 पर प्रसारित होंगे। ग्रामीण

फिल्म संगीत शाम 7:52 पर। विज्ञान कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात के 8:15 से। समाचार संध्या रात 8:45 से, न्यूज एट 9 9 बजे से, एवं उर्दू में खबरें रात्रि के 9:15 से प्रसारित होंगे।

कार्यक्रम विज्ञान भारती रात 9:30 से, और इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। और रात 10 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण होगा, और इसे भी हम अपने दिल्ली केंद्र से ही रिले कर आप तक पहुंचाते हैं।

और अब कल प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। वंदे मातरम के साथ ही आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा सुबह सवेरे 5:45 पर। कृषि चर्चा प्रातः 5:55 पर। कल हमारे किसान श्रोता जानकारी हासिल कर सकते हैं मिट्टी जांच का महत्व विषय पर। स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:05 पर। कल स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत हमारे श्रोता सुन सकते हैं माइग्रेन विषय पर जानकारी और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद यासीन। वंदना प्रातः 6:10 पर। रामचरितमानस गान का रसपान हमारे श्रोता कर सकते हैं प्रातः 6:40 पर और कार्यक्रम नमस्कार मिथिला प्रातः 7:05 से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के शेष एवं कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। स्थानीय सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं। आज के कलाकार थे गौतम मिश्र एवं काशीनाथ झा किरण। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल्हि 28 जून के आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देश आ विदेशक लोकक संग अपन विचार साझा करताह। ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक 135वां संस्करण होयत। कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सभ चैनल, AIR न्यूजक वेबसाइट आ न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप पर कयल जायत। संगहि AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आ सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयक यूट्यूब चैनल पर सेहो एकर सीधा प्रसारण होयत। मन की बात कार्यक्रमक प्रसारण प्रसार भारतीक OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर सेहो सुनल जा सकैत अछि। एकर तुरंत बाद मैथिली भाषा मे एहि कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणीक दरभंगा केन्द्र सँ कयल जायत। एहि प्रसारण के दोबारा राति 8 बजे सँ सेहो सुनल जा सकैत अछि। आई MSME दिवस अछि। एहि अवसर पर देशभरि मे लघु आ मध्यम उद्यम के बढ़ावा देबाक लेल कतेको कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि। केंद्रीय सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी नव दिल्ली मे आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करैत कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 धरि भारत के विकसित बनेबाक संकल्प के MSMEक माध्यम सँ पूरा कयल जायत। श्री मांझी कहलनि जे देशक MSME सेक्टर लगातार रोजगारक अवसर उपलब्ध करा रहल अछि। ओ कहलनि जे 2014 सँ एखन धरि सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम क्षेत्र मे 38

0: करोड़ रोजगारक अवसर उपलब्ध कराओल गेल। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान काल्हि नव दिल्ली मे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलनक अध्यक्षता करताह। दू दिनक एहि सम्मेलन मे बिहार समेत सभ राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशक ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ लोकनि के भाग लेबाक छनि। राज्य सरकारक पहल पर पंचायती राज विभाग दिस सँ आब प्रत्येक मासक अंतिम रवि दिन सभ ग्राम पंचायत मे पंचायत विकास दिवसक आयोजन कयल जायत। एहि मासक कार्यक्रमक विषय थिक महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल्हि मुंगेरक टेटिया बम्बर पंचायत सँ एहि कार्यक्रमक शुभारंभ करताह। प्रदेशक गन्ना मंत्री संजय पासवान कहलनि अछि जे प्रदेशक लोक के आब मजदूरी करबाक लेल बाहर नहि जयबाक होयत। मुंगेर मे संवाददाता लोकनि सँ गपशप मे श्री पासवान कहलनि जे प्रदेश मे आबय वला दिन मे 25 कुशियार फैक्ट्री समेत कतेको कल कारखाना खोलल जायत। श्री पासवान आइ मुंगेर जिलाक बगचपरा मे गंगा नदी मे डूबला सँ मृत युवती सभक परिजन सँ भेंट कऽ हुनका आपदा राहत कोष सँ 4.4 लाख टाकाक चेक सौंपलनि। मौसम विभाग आइ प्रदेशक किछु क्षेत्र मे वर्षा हेबाक पूर्वानुमान व्यक्त कयने अछि। विभाग अगिला 2-3 घंटा मे अररिया, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पटना, पूर्णिया आ सुपौल जिलाक किछु स्थान पर अन्हर, वर्षा आ ठनका खसबा के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयने अछि। विभाग काल्हि सँ सम्पूर्ण बिहार मे मानसून के बेसी सक्रिय हेबाक संभावना व्यक्त कयलक अछि। केन्द्रीय चयन परिषद दिस सँ काल्हि प्रदेशक विभिन्न केन्द्र पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षाक आयोजन कयल जायत। 993 पद लेल आयोजित ई परीक्षा 2 पाली मे होयत। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षार्थी सभक सुविधा लेल आइ आ काल्हि 13 परीक्षा विशेष ट्रेन चलेबाक घोषणा कयलक अछि। दानापुर मंडल दिस सँ आइ पटनाक विभिन्न रेलवे स्टेशन सँ सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया आ सिवानक लेल कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाओल जा रहल अछि। ओतहि काल्हि 7 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाओल जायत। आइ हेलन केलर दिवस अछि। प्रतिवर्ष 27 जून के हेलन केलरक जन्मक स्मृति मे ई दिन मनाओल जाइत अछि। हेलन केलर जन्महि सँ दिव्यांग छलीह। देखबाक आ सुनबाक क्षमता नहि भेलाक बादो ओ जीवन मे दृढ़ संकल्प देखौली आ अपन लक्ष्य प्राप्त कयलीह। एहि अवसर पर प्रदेश मे कतेको कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल। अररिया में जिलाधिकारी विनोद दोहनक उपस्थिति में एनआईसीक रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयरक माध्यम सँ कर्मी सभक पैघ स्तर पर स्थानांतरण आ पदस्थापनक प्रक्रिया पूरा कयल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

गाम घर अंतर्गत झरोखा में सब श्रोता लोकन के मोनिक स्नेहपूर्वक नमस्कार संगे सब गोटे के स्वागत करै छियन। अपन श्रोता सब नीक हेथिन यह हमर सबहक कामना रहत अछि जे सब कोई स्वस्थ रहत। स्वास्थ्य ही धन अछि ई तो अपना सब गोटे जानिते छी, मुदा आबक समय में नीक स्वास्थ्य सबके लेल एकमात्र प्रयास अछि जे अपना सब गोटे रोज करैत छी। ई प्रयास से केना का अपना सब स्वस्थ रही, सही असंतुलित आहार, सही दिनचर्या, योग, व्यायाम सब किछ अपना सब अपनावैत छी। आ जो एकरा सब के अपनाबी तो अही में निरंतरता बनेने राखी। ई नहीं जे दू दिन चारि दिन केलों योग बस, अखन देखी रहल छी कि हाल ही में अपना सब 21 जून का 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनेलो, ओहि दिन

तीखो गोटा योग व्यायाम केलथ, सब अपन अपन फोटो देखलों जेकि मोबाइल में लगेलथ, मुदा कि ई रोज चल रहल अछि कि बस एक दिन के छल दिखावा। जिनका सबके योग व्यायाम सब दिन चलै छन ओ सब स्वस्थ रहैत छथि, मुदा जे सब कहियो कहियो बस दिखावा के लेल योग व्यायाम करैत छथिन ओ सब स्वस्थ कोना रहता। श्रोता लोकनि, अपना सबके स्वास्थ्य संबंधी किछु ने किछु समस्या तऽ रहिते अछि, तखनो अपना सब प्रयास करैत छी जे स्वस्थ रही। आपके समय में देखब जे सब गोटे के ब्लड प्रेशर या मधुमेह, थायराइड, कत्ते रंगक बीमारी रहैत अछि, किछु सँ किछु अपना सब परेशान रहै छी, तंग रहै छी जे केना स्वस्थ रहब। अपना सब स्वस्थ रही एकरा लेल एकटा आओर प्रयास करबाके चाही जे स्वच्छता के अपनाबी। साफ सफाई जतेक राखब मोन ओतेक प्रसन्न रहत। कहलो जाइत अछि ने जे स्वच्छता में भगवान के वास होइत छैन, तऽ अपन शरीर से लऽ कऽ अपन घर, आंगन, दरबज्जा, भनसाघर सबके साफ सुथरा कऽ कऽ राखी। कतेक नीक लागैत अछि ने बैसऽमे जखन अपन दरबज्जा दलान सब साफ चमकैत रहैत अछि। आब तऽ देखब आधुनिक समयमे जे टाइल्स मार्बल लागि गेल यऽ, मुदा पहिलेके समयमे मोन अछि ने गाममे जे दरबज्जा पर जखन इजोरिया राति रहैत अछि तऽ चमकैत रहैत अछि, जखन अंगना माटिसँ नीपल रहै छलै, कतेक साफ रहै छलै, कतेक सुन्दर लागै छलै, गर्मियोमे एकदम ठंडा ठंडा रहैत छलै। मुदा आब तऽ कहिए रहल छी जे कि टाइल्स मार्बलके बेसी उपयोग अपना सब करैत छी, तऽ ठंडा कहाँसँ रहत, गर्माहट तऽ रहबे करत, तऽ गर्मी लागैत अछि। एहि गर्मीमे अपना सब ठंडायल रही, एहिके लेल सब गोटे घर घर देखै छी जेकि मशीनक व्यवहार करै छी, कूलर हुए, एसी हुए, फ्रिज हुए, एकर उपयोग तऽ सब कोइ बुझियौ तऽ करिते छथि। एहिसँ जीवन तऽ बहुत आसान भऽ गेल अछि अपना सब गोटेके, मुदा जनैत छी जेकि कतेको व्यक्ति एहन छथिन जे एहि उपकरण सबके नीकसँ साफ नहि करै छथिन आ ओ बीमारीके घर बनि जाइत अछि। कूलरमे जमा पानि अछि, छोड़ि दै छथिन, ओहिसँ मच्छर पनपैत अछि। फ्रिजके सफाइ नहि होइ छनि, जँ बेसी दिन गन्दा भऽ गेल तऽ ओहिमे जे खाना पीना रहल ओहिसँ बीमारी पसरैत अछि। एहिमे जे सामान राखल अछि ओ खा लै छी, अपनासँ बीमार पड़ि जाइ छी। तऽ जँ अपना सबके स्वस्थ रहबाके अछि तऽ स्वच्छताके सङ्गे अपना सब एकदम अपनाबी, स्वस्थ रहब तखने ने स्वस्थ रहब। तैं दुआरे साफ सफाई एकदमसँ अपनाबी। आब श्रोता लोकनि सोचथिन जे की बात छै, आइ मुनि बहिन खाली गप्पे करथिन कि गीतो नाद दिस चलथिन, तऽ गीत नाद सुनब, मुदा ओहिसँ पहिले जे विराम अछि ओ लऽ लै छी।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
3: बात घर की।
4: नमस्कार, मैं रवि किशन। अरविंद जी ने पूछा है, निर्माण के लिए बजट का अनुमान ये पहले ही लगाना चाहते थे ताकि प्लानिंग के साथ आगे इनके मन को तसल्ली रहे। इंजीनियर बाबू से जवाब सुनते हैं।
5: एक बेहतर कॉन्ट्रैक्टर या राजमिस्त्री का चुनाव, उचित घर बनाने की सामग्री का इंतजाम और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान।

0: ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। घर के इंटीरियर्स जैसे टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल काम, पेंटिंग और फर्नीचर घर बनाने के बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन आप घर के ढांचे की गुणवत्ता और मजबूती से कोई समझौता ना करें।
1: बात घर की।
2: तो सब गोटे के श्रोता लोकन के स्वागत करै छियनि अपना सब कार्यक्रम गाम घर के झरोखा में। गप सप केलहुँ अपना सब जे कि स्वस्थ रहनाइ तऽ बड़ आवश्यक अछि। जखन अपना सब स्वस्थ रहैत छी तखने अपन सबके सब काज समयसँ होइत अछि, समयसँ चलैत छी। आ एकरा लेल बड़ आवश्यक अछि जे अपना सब स्वच्छता के अपनाबी। निश्चिते छै जे साफ रहब अपना सब तऽ स्वस्थ रहबे करब। आ स्वच्छता के गप केलहुँ, स्वास्थ्य के गप केलहुँ, सङ्ग सङ्ग मनोरञ्जन नहि हुए तऽ मोन नहि लागैत अछि। तऽ श्रोता लोकनि अपना सब गीतना दिस चलैत छी आ सुनैत छी अरविन्द कुमार झा आ ओम प्रकाश सिंह के स्वर में गाओल ई लोक भजन।

0: किन नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा प्रखंड आलमनगर जिला मधेपुरा जी मैंने काम करवाए है। अभी तो मेरा बाहर इलाका है कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं 10 से 15 पक्की सड़क में मैं दो बार मुखिया बनी।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं प्रेमा देवी 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर प्रखंड रोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लबेड़ी खोले हैं जिसका मिल रही है अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: अहिसने से पहले अरविंद कुमार झा आ ओम प्रकाश सिंह के स्वर में गाओल गीत अपना सब सुनलो लोक भजन कतिक नीक लागल श्रोता लोकन। जखन अपना सब स्वास्थ्य के गप करे छी तखन कनिक ध्यान मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो चल जाइत अछि। जो मानसिक रूप से स्वस्थ रही अपना सब तखनो बहुत काज उसरत अछि। जखन मन में तनाव होइत अछि तो काज करे छी किछु लिखैत छी किछु लिखाइत अछि किछु। एना सब गोटे संगे होइत अछि न कि हमरे संगे होइत अछि से जरूर कहब। ओना अपना सब मानसिक स्वस्थ रहे अपन सबके मन स्वस्थ रहे अही के लेल खूब नीक से गीत नाद सुनैत छी। कार्यक्रम झरोखा में हमरो सबक प्रयास रहैत अछि जे कि अपन श्रोता लोकन के खूब नीक नीक गीत सुनाबी आ हुनको सबके मन एकदम स्वस्थ रहन। जेहने देह स्वस्थ रहन निरोग रहन ओहिना मन स्वस्थ रहन। तो अही क्रम में एकटा और गीत सुनैत छी।

मेरा मिस्र आ सहेली के गाओल अहे गीत के सुनित सुनित अपना सब झरोखा के समेट क आ खेती गृहस्थी में किसान भाई के स्वागत करेला पहुँच गेल छी। किसान भाई, बारहो मास नीक से खेती

0: हुए नीक उत्पादन हुए एहिमे लागल रहैत छथिन। नारियल के गाछ सबसे उपयोगी गाछ होइत अछि। एकर जे छै सब भाग के कोनो ने कोनो रूप मे अपना सब के लेल उपयोगी होइत अछि। एकरा कल्प वृक्ष सेहो कहल जाइत अछि। नारियल के गड़ी के सुखा कऽ वनस्पति तेलक सर्वोत्तम स्रोत अछि। तऽ किसान भाई, नारियलक गाछ विभिन्न प्रकारक जलवायु आ माटिक परिस्थिति मे बढ़ैत पाओल जाइत अछि। आ नारियल के मुख्यतः दूटा किस्म अछि, लम्बा आ बौना। चुनल गेल बीया फल सँ उगाओल जाय वाला ई पौधक द्वारा नारियल बढ़ाओल जाइत अछि। सामान्यतः 9 से 12 मास आयु वाला बीज पौध रोपण के लेल उपयोग कयल जाइत अछि। आ 9 से 12 मास वाला ओहि पौधा के चुनबाक चाही जाहिमे कि कम से कम 6 से 8 गो पत्ता हुए, तखने एकरा रोपबाक चाही। आ किसान भाई, नारियलक के गाछ लगेबाक उपयुक्त समय जे छै से जून मास सँ सितम्बर धरि अछि। मुदा जतय पटौनी के व्यवस्था हुए ओतय जाड़ आ भारी बरसात छोड़ि कऽ कखनो पौध लगा सकैत छी। उपरोक्त विधि से तैयार कयल गेल गद्दा के ठीक बीचोबीच खुरपी या हाथ से नारियल फल के आकार के खद्दा बना कऽ पौध राखि दी आ चारू दिस से माटि भेट देबाक चाही आ माटि के खूब नीक से दबा देबाक चाही। जँ वर्षा नहि भेल हुए तखन पौधा लगेला के बाद तऽ पटौनी के आवश्यकता होइत अछि। नारियल बिचड़ा के रोपनी के समय में ध्यान रखना आवश्यक अछि कि बिचड़ा के ग्रीवा स्थल सँ 2 इंच व्यासक बीज नट अंश के माटि से नहीं झाँपी, ओकरा नहीं झाँपे के छै। एकर ध्यान किसान भाई अवश्य राखब, नहीं तो बिचड़ा में श्वसन क्रिया ठीक से नहीं भेला पर ओकर वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ सकैत अछि। जे क्षेत्र में दीमक के प्रकोप हुए तो ओतक गड्ढा भरित समय 10 ग्राम थीमेट माटि के संगे अवश्य मिला देवा के चाही। तो किसान भाई, इत नारियल के आधुनिक खेती केना करब से गप सब करै छलहुँ हैं। आगे गप और करब आ जे समसामयिक सुझाव अछि, मौसम अछि, ओहो जानकारी देबनि किसान भाई के। मुदा ओहिसँ पहले व्यवसाय सनेश सुनि लै छी।
1: नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहार पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है, अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: तो किसान भाई के फिर से कार्यक्रम खेती गृहस्थी में स्वागत करै छिए। स्वागत करे के संग संग जे प्रायोजित कार्यक्रम अछि ओहो सुनेबाक बेर भ गेल अछि। तो चलू सुनै छी अपना सब प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं अनकर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमेशा

0: की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है
1: 8-8-6-0-0-8-8-8-2-7। जी हाँ, 8-8-6-0-0-8-8-8-2-7।
0: श्रोताओं, छोटी छोटी गलत फहमियों से हो रहे हैं रिश्ते खत्म। इन गलत फहमियों को मिटाकर रिश्ते बचा लीजिए। जी हाँ, ऐसे ही रिश्तों की डोर को टूटने से बचाने के लिए पहले सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जी हाँ, बिना सुने ही अगर आप अपने विचारों को दूसरों को सुनाने लगे तो यकीन मानिए आप अपनों से दूर हो जाएंगे। श्रोताओं, कभी कभी सामने वाला हमारे फायदे की बात या फिर हमारे फायदे का काम करता है। जी हाँ, परंतु हम उसकी बात या हम उसके काम के मतलब को सुने व समझे बिना ही अपनी नकारात्मक सोच से उसको गलत समझ लेते हैं और अपने शुभ चिंतक को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। जी हाँ, बाद में पछताने से अच्छा है कि समय रहते ही हम सामने वाले के कहे गए या किए गए कार्यों के बारे में पूछ लें। जी हाँ, पूछ लें कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो श्रोताओं, आज मैं आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक केकड़ा समुद्र के किनारे घूमने निकला। वो समुद्र के किनारे घूमकर बहुत ही खुश हो रहा था। जी हाँ, अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पैरों के निशान, जो कि गीली रेत पर बने थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखकर वो केकड़ा बहुत खुश हो गया। अरे वाह, मेरे पैरों के निशान कितने प्यारे लग रहे हैं। परंतु उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक ना रह सकी। जी हाँ, समुद्र की एक लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान को मिटा गई। अब ये देखकर तो केकड़े को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में समुद्र की लहर से बोला, अरे ओ लहर, तुम तो मेरी सबसे अच्छी और प्यारी मित्र हो, फिर तुमने मेरे इतने सुंदर पैरों के निशान क्यों मिटा दिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना दुख पहुंचा है? ये सब सुनकर लहर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, भाई मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया है और बहुत बुरा भी लगा है, परंतु जरा नजर उठाकर दूर देखो, वहां कुछ मछुआरे आ रहे हैं और वो केकड़ों का शिकार करते हैं। तुम्हारे पैरों के निशान देखकर वो यहाँ जरूर आ सकते हैं। वो मछुआरे यहाँ ना आए इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान को मिटा दिया, जिससे तुम्हारी जान बच सके। जी हाँ, समुद्र की ये बात सुनकर केकड़े को अपनी बात और अपनी सोच पर पछतावा हुआ और अपने मित्र पर बहुत ही गर्व हुआ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है हमारा आज का नाटक।
2: यह एक पारिवारिक नाटक है जिसमें सभी मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आइए सुनते हैं कि इस नाटक में कब और क्यों एक गलतफहमी ने जन्म ले लिया और उसको कैसे दूर किया गया।

0: अरे अंजलि, देखो तो दरवाजे पर कोई आया है।
1: जी माँ जी। अरे महक दीदी, आप कैसे हो?
2: ठीक हूँ भाभी।
1: आओ दीदी आओ, अंदर आओ, लाओ सामान मुझे दे दो।
2: भाभी, माँ कहाँ है?
1: दीदी वो तो अपने कमरे में है।
2: ठीक है, मैं माँ के कमरे में ही जाती हूँ।
1: ठीक है दीदी, मैं आपके लिए वही चाय और पानी लाती हूँ।
2: ठीक है भाभी। माँ, माँ जी नमस्ते, कैसे हो?
0: अरे महक बेटा, आओ आओ।
2: क्या बात है माँ, बहुत आराम हो रहा है, तबीयत तो ठीक है आपकी?
0: हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, तेरे साथ

0: ससुर और रमेश सब ठीक है ना?
1: हाँ माँ, सब ठीक है।
0: और सुना, कैसे आना हुआ?
1: अरे माँ, रमेश को कहीं कुछ काम था और मेरी ननद सुदेश आई हुई थी। मैंने माँ जी से पूछा कि मैं अपनी मम्मी को मिलने जाऊंगी और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तभी मम्मी जी ने बोला, हाँ हाँ चली जाओ, सुदेश तो आ ही गई है, सब काम देख लेगी। तो मैं यहाँ आ गई तुमसे मिलने के लिए।
0: अच्छा किया बेटा।
2: तभी अंजलि चाय और कुछ गरम गरम पकौड़े लेकर आती है, जो महक को बहुत पसंद थे। पकौड़े को देखकर महक बहुत खुश हो गई।
1: अरे वाह भाभी, मजा आ गया पकौड़े खाकर।
0: अरे अंजलि बेटा, तू भी बैठ हमारे साथ, पकौड़े खा।
3: अरे मम्मी जी, किचन में काम पड़ा है बहुत।
0: अरे हो जाएगा काम, दो घड़ी हमारे साथ भी तो बैठ।
3: पर मम्मी जी।
0: पर वर कुछ नहीं।
3: ठीक है माँ जी।
1: भाभी सच में पकौड़े बहुत स्वाद थे, पेट भर गया पर मन नहीं भरा।
3: कोई बात नहीं, कल फिर बना दूंगी।
1: ओहो भाभी आप बहुत अच्छी हो।
0: बस बस, अब मेरी बहू को नजर मत लगाओ।
2: ऐसे ही बात करते करते पूरा दिन निकल जाता है और शाम के समय अंजलि डिनर की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ महक आ जाती है।
1: अरे भाभी क्या बना रही हो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
3: तुम्हारे पसंद के राजमा चावल और साथ में आलू का रायता।
1: अरे भाभी आज तो मजा ही आ जाएगा, मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाती हूँ।
3: अरे अरे नहीं, मैं कर लूँगी।
1: अरे भाभी जल्दी काम करके आराम से बैठकर बातें करेंगे फिर।
3: ठीक है दीदी।
2: तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। महक दरवाजा खोलती है तो पास की एक आंटी जी आती है। महक उनको अपनी माँ के कमरे में ले जाती है। तीनों कमरे में खुश होकर बातें करते हैं। आंटी जी बोली,
4: अरे कमला जी आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके पास तो इतनी अच्छी बेटी और बहू है।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी तो बहुत मीठी है और बहू नमक है नमक।
2: उनकी ये बातें सुनकर अंजलि चुप रहती है। उसको बहुत बुरा लगता है परंतु कुछ बोलती नहीं और अब पहले की तरह काम में लगी रहती। परंतु अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह सोचती है, मैं सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती और माँ का भी पूरा ध्यान रखती, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देती। फिर महक अपने घर चली गई पर अंजलि अभी भी चुप ही थी। कमला जी ने उसके बदले व्यवहार को देखकर उससे बात करने की सोची।
0: अंजलि क्या बात है, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो, कोई बात है क्या, तबीयत तो ठीक है?
3: ठीक है मम्मी जी।
0: फिर ऐसी चुप चुप क्यों हो?
3: मम्मी जी एक बात पूछूं?
0: हाँ हाँ बेटा पूछ।
3: जब सरोज आंटी आई थी तब उनके सामने आपने महक को तो मीठा और मुझे नमक बताया, आखिर मेरी सेवा में क्या कमी रहेगी जो आपने मुझे नमक बताया?
0: हे भगवान, तुम बस इस बात से परेशान हो?
3: हाँ मम्मी जी, आपकी वो बात मुझे चुभ गई, तब से मुझे समझ नहीं आ रही आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला।
0: अरे बेटा तुम मेरी बात को समझी नहीं।
3: क्या मतलब मम्मी जी?
0: सुन बेटा, महक मेरे लिए मीठा है, अब ये बात बता, मीठा क्या मैं रोज खा सकती हूँ? रोज मीठा खाकर मैं रह सकती हूँ क्या?
3: नहीं मम्मी जी।
0: अब ये बात बता, नमक के बिना मेरा एक दिन भी गुजर सकता है क्या?
3: नहीं मम्मी जी।
0: इसलिए तुझे नमक कहा, क्योंकि बेटी बेटी तो महीने दो महीने में आ जाए उतना ही बहुत होता है। मेरे लिए तो बेटा तू तो मेरा नमक है नमक, तेरे बिना तो मेरा एक काम भी नहीं हो सकता। तू ही तो है जो मुझ बुढ़िया का सहारा है, तू तो मुझे हर दिन हर पल चाहिए।
3: अरे मम्मी जी सॉरी, अब समझी कि आपने मुझे नमक क्यों कहा।
0: शुक्र है समय रहते तूने मुझसे पूछ लिया, नहीं तो मन ही मन ना जाने क्या क्या सोचकर मन खट्टा करती रहती।
3: अरे मम्मी जी वो मैं बस।
0: बेटा मन में कोई बात आए तो पूछ लिया कर, आखिर हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं।
3: मुझे माफ करना मम्मी जी।
0: बेटा जी माफी नहीं, तुम्हें तो सजा मिलेगी, तुझे मेरे लिए चाय बनाने की सजा मिलेगी।

0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि कमला जी ने अपनी बहू को नमक क्यों कहा। सच है, सच है। एक सास के लिए उसकी बहू नमक की तरह ही होती है, जो उसके अंतिम समय तक उसकी देखभाल करती है।
1: तो श्रोताओं, सुना आपने किस तरह से कमला जी की कही हुई नमक और मीठे वाली बात का अंजलि ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इस कारण अंजलि मन ही मन अपनी नकारात्मक सोच में उलझने लगी और अपनी सास से भी इसके विषय में नहीं पूछ पा रही थी। परंतु सास कमला जी ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो बहू आनाकानी करने लगी, परंतु सास के बार बार पूछने पर बहू ने सास से पूछ ही लिया, मेरी सेवा में कहां

मन अपनी नकारात्मक सोच में उलझने लगी और अपनी सास से भी इसके विषय में नहीं पूछ पा रही थी। परंतु सास कमला जी ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो बहू आनाकानी करने लगी, परंतु सास के बार बार पूछने पर बहू ने सास से पूछ ही लिया, मेरी सेवा में कहां कमी रह गई जो आपने मुझे नमक कहा। और सास कमला ने भी बात की नजाकत को समझते हुए उसकी शंकाओं को दूर किया और बहू ने भी उनकी बात को समझा और अपनी गलत फहमी को स्वीकार करते हुए सास से माफी भी मांगी। तो श्रोताओं, बहुत से घरों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सामने वाला आपसे कुछ और कहना चाहता है, परंतु आप उसके शब्दों के मूल्यों को ना समझकर उसका अपने विचार अनुसार मतलब निकाल लेते हैं, या सामने वाला आपकी बात को सही से समझ नहीं पाता, जिससे कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है और दो और सालों के रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। तो श्रोताओं, गलत फहमियों को अपने रिश्तों से दूर करें और इसका एक ही उपाय है, जी हाँ, आपस में बैठें और बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के कहे हुए बातों को सुनें। आपस में बातचीत करने से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। श्रोताओं, ये समय है कि हम अपने कुछ श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में साझा करें। जी हाँ, हमारे श्रोता हैं कृपाल सिंह उर्फ मंत्री जी सीतापुर यूपी से, गंगूरदास जी समस्तीपुर से, नसरुद्दीन सिद्दीकी जी यूपी से, डॉक्टर शिव प्रसाद प्रतापगढ़ से। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तऽ किसान श्रोता भाई अखन अपना सब सुनैत छलहुँ हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, आ एहिके सङ्गे आब अपन किसान भाइके मौसमके जानकारी सेहो दऽ दै छियनि। मौसमके जानकारी जे अछि से 30 जून धरिके आयल अछि डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुरसँ। पूर्वानुमान अवधिमे आमतौर पर मौसमके शुष्क रहबाक सम्भावना अछि। किछु स्थान पर 27 सँ 29 जून के दौरान जे छै मेघ गर्जन तेज झोंका अन्हर चलबाक संभावना अछि। कतौ कतौ हल्लुक बरखा भऽ सकैत अछि। एहि दौरान औसतन अधिकतम तापमान 32 सँ 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि आ न्यूनतम तापमान 24 सँ 28 डिग्री सेल्सियस रहबाक संभावना अछि आ मुख्यतः पूर्वा हवा 14 सँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा के गति सँ चलबाक संभावना बनि रहल अछि। किसान भाई एहि मौसम मे जे किसान भाई के समसामयिक सुझाव देल जाइत अछि, उचास जमीन मे खरीफ मकई के बाउग करैत चली अखन। अंतिम जुताई के समय 100 सँ 150 क्विंटल सरल गोबरक खाद आ 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर आ 50 किलोग्राम पोटासक व्यवहार करी। शक्तिमान 2, शक्तिमान 5, शक्तिमान 6 आ राजेंद्र शंकर मक्का 3 ई सब जे

समय एकर बाग पर्याप्त नमी भेला पर तखन किसान भाई करित उचास जमीन में राहर के बाग के लिए खेतक उड़ियान किसान भाई कह सकै छथिन। बहार पूसा नौ राजेंद्र अरहर एक राजेंद्र अरहर दू किस्म के बाग 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसान भाई कह सकै छथिन। अंतिम जोताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम स्फूर 20 किलोग्राम पोटाश आ 20 किलोग्राम गंधक के व्यवहार करित। राहर के अनुशंसित बीज दर जे छै से 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अछि। बाग से पहले बिया के कार्बेंडाजिम क्लोरपाइरिफास आ राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य कऽ ली। किसान भाई खरीफ तरकारी जेना भिंडी सजमनि खीरा नेनुआ ई सभक बाग किसान भाई कऽ सकै छथिन। कम बरखा के वर्तमान परिस्थिति मे खेत मे खरपतवार के बेसी प्रकोप के संभावना अछि। एहि दुआरे समय समय पर कमौनी निकौनी करनाय अत्यंत आवश्यक अछि आ 5-7 दिन के अंतराल पर पटौनी करी आ पत्ता वाला सूढ़ी के फल छेदक कीट के निगरानी आवश्यकता पड़ला पर डाइमेथोएट 30 EC के 1.5 मिलीलीटर के प्रति लीटर पानि में घोरि कऽ तखन छिड़काव किसान भाई अवश्य करैत। आब एहि जानकारी के संग आजुक जे खेती गृहस्थी अछि ओहो समेटबाक बेर भऽ गेल अछि तऽ किसान भाई सबसे चलबाक आज्ञा मांगै छी। नमस्कार।

ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर एवं खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपकी ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
4: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
3: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
4: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
3: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
4: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में कल होगा पंचायत विकास दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प एमएसएमई के माध्यम से होगा पूरा। और प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। बिहार सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल मुंगेर जिले के टेटिया बंबर पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना। आज एमएसएमई दिवस है। इस अवसर पर देशभर में लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2000

0: 1947 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को एमएसएमई के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि आज भारत को विश्व के चौथा आर्थिक व्यवस्था में लाने में कामयाब हुए हैं जापान को पछाड़ करके, और वो चाहते हैं, उनका कल्पना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत के रूप में संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था के रूप में बनाएं, ये उनका स्वप्न है।
0: श्री मांझी ने कहा कि देश का एमएसएमई सेक्टर लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 38 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
1: अन्य विभाग की बात नहीं कहता, हम अपने विभाग की बात करते हैं। जो अभी आपने सुना कि आज एमएसएमई की जो इकाइयां हैं वो लगभग 8 करोड़ से ऊपर की बात, जिसकी बात कही गई कि 38 करोड़ लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से नियोजन दिया, ये स्पष्ट है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना के बीरचंद पटेल स्थित शहीद देवीपद स्मारक मिलर हाइस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने आज विद्यालय का दौरा किया और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय राज्य के सभी विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय बनेगा। राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अपार आईडी के बिना परीक्षा के लिए निबंधन नहीं कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि अपार आईडी छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक पहचान है जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाता है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्राचार्य की गंभीर लापरवाही की जांच उच्च स्तरीय समिति करेगी। श्री कुमार ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
2: जो मैं निरीक्षण करने गया था 23 तारीख को पीएमसीएच में, प्राचार्य अनुपस्थित थे, तो उनके लिए मैंने एक जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद उनका पक्ष रखा जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे कि क्यों नहीं थे, उसके बाद उन पर कार्यवाही की जाए। और हमारे विभाग की नीति एकदम स्पष्ट है कि ऐसे ऐसे किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट या अनुपस्थित रहेंगे बिना बताए, तो उन पर भी आगे कार्रवाई हो सकेगी।
0: गन्ना मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
3: मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा, आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे। और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
0: श्री पासवान ने मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर आज जिले का दौरा किया। इस दौरान बगचपरा में गंगा नदी में डूबने से मृत युवतियों के परिजनों से मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से आपदा राहत राशि 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 विशेष परीक्षा ट्रेन चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून का विस्तार हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सीवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मधेपुरा के पुरौनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, नालंदा, पटना, पूर्णिया और सुपौल जिले के कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि अनावश्यक रूप से इस दौरान बाहर न निकलें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि अग्नि सुरक्षा केवल एक बार का प्रयास नहीं बल्कि सतत दायित्व है। राज्यपाल ने लोकभवन में आज राज्य स्तरीय अग्नि सुरक्षा तैयारी सेमिनार में फायर सेफ्टी डिक्लेरेशन का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। राज्यपाल श्री हसनैन ने कहा कि आगजनी की घटनाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को प्रभावी तैयारी और जागरूकता के माध्यम से कम किया जा सकता है। राज्यपाल ने सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी बिहार के निर्माण के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे तक ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक विद्युत संबंधी सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। आज हेलेन केलर दिवस है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इधर कल हेलेन केलर जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में परिषद और बिहार उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 25 दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी मुहर्रम के ताजिया जुलूस का पहलाम किया जा रहा है। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थर की मस्जिद इलाके में स्थित दरगाह में आज दूसरे दिन भी विभिन्न क्षेत्रों से निकाले गए ताजिया का पहलाम जारी है। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने मिशन शक्ति के तहत संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। जहानाबाद की जिलाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया ने आज जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, इसे किसानों तक आसानी से उपलब्ध कराया जाए। अररिया जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत नारा लेखन, निबंधन लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने तामगंज मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इन पर छात्रों से विद्यालय अवधि में कीटनाशक का छिड़काव कराने का आरोप है। वहीं नाथनगर मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक को छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फोन चलाने के आरोप में एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया। रोहतास जिला भाजपा इकाई की ओर से समीक्षा बैठक की गई। पार्टी प्रदेश

महामंत्री अभिषेक नितिन ने कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया है। सुपौल जिले के विभिन्न स्थानों पर आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सीवान जिले के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रज्ञा प्रवाह की ओर से भारत बोध सांस्कृतिक अवधारणा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के तौर पर रामाशीष सिंह, डॉ प्रजापति त्रिपाठी समेत अन्य ने अपने विचार रखे। शिवहर जिले के विभिन्न अंचलों में आज भूमि विवाद निष्पादन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। अररिया जिले में जिलाधिकारी विनोद दुहन की उपस्थिति में एनआईसी के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं जिले के आरएस थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो युवकों को 101 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में कल होगा पंचायत विकास दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प एमएसएमई के माध्यम से होगा पूरा। और प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
1: मधुबनी जिले में मोहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे जिले में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा दंडाधिकारियों की लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई। जुलूस मार्गों पर भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। राज्य सरकार ने राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिसमें मधुबनी जिला को भी सांझा विश्वविद्यालय की स्वीकृति मिली है। विश्वविद्यालय की मंजूरी मिलने पर सांझा विश्वविद्यालय के फाउंडर्स और सांसद

0: डॉक्टर फैयाज अहमद, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर सह विधायक आसिफ अहमद और विश्वविद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर तौसीफ अहमद ने मुख्यमंत्री समाज चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। इधर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बीते दिनों मधुबनी जिला मुख्यालय में आधुनिक अटल कला भवन के निर्माण के लिए 19,73,26,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 620 दर्शकों क्षमता वाले इस आधुनिक ऑडिटोरियम एवं संस्कृति परिसर का निर्माण भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्रकरण के आधार पर कराया जाएगा। जिले में पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जिले में वर्तमान में 5,79,123 पेंशनधारी हैं, जो राज्य में सर्वाधिक है। अब तक 4,71,318 पेंशनधारकों ने अपना प्रमाणीकरण करा लिया है, जबकि 1,17,800 पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण शेष है। जिला अधिकारी अनंत शर्मा ने पेंशनधारकों से अपील करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशनधारकों को वर्ष में एक बार अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा समाज के तीन वर्ग वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगों को प्रत्येक माह 1100 रुपया पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। जिला अधिकारी ने कहा कि जो पेंशनधारी जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा पाए हैं, उनको पेंशन भुगतान मार्च 2026 से विभाग द्वारा रोक दिया जाएगा। वहीं जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और शिविर में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों की प्रगति की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सहयोग शिविर पोर्टल पर अब तक कुल 8,799 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 88% आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि जन सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का समय वृद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, किसी भी आवेदन को लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त भारत सप्ताह के अवसर पर उत्कर्णित मध्य विद्यालय पंडौल में बच्चों के बीच नशे के बढ़ते दुष्प्रभाव के विषय पर पेंटिंग और निबंधन लेखन प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों एवं युवाओं के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। प्रतियोगिता में विद्यालय के अनेक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिले के बेनीपट्टी में कुल 14 राजकीय नलकूप हैं, लेकिन नाला नहीं रहने के कारण इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पर एसडीएम सारंग पानी पांडे ने संबंधित अधिकारियों से सभी स्टेट बोरिंग की स्थिति पर 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन देने की निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किन किन बोरिंग में किस प्रकार की समस्या है और उन्हें दूर कर किसानों को कैसे लाभान्वित किया जा सके, इसकी सूची भी उपलब्ध कराई जाए। जिले में किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने तथा खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार सघन निगरानी और औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी द्वारा लौखी प्रखंड क्षेत्र में खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। झंझारपुर मधुबनी यात्री मार्ग पर आधुनिक और स्वच्छित पिंक बस सेवा 29 जून 2026 से शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और आम यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस बस सेवा का शुभारंभ नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे मधुबनी जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
2: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों को। दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म ऐतराज का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण एवं अलका याज्ञिक ने। समीर के बोल को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

उदित नारायण एवं अलका याग्निक के गाए फिल्म ऐतराज के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
1: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच में हाजिर है इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से। पूरे बिहार में हम बज रहे हैं। जी हाँ, युवा साथियों के लिए, उनके करियर के लिए माता पिता से भी बातचीत हो रही है और ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा संस्थान जो पिछले 27 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ BCA और BBA के कोर्स को लेकर लगा है, एक अच्छा शिक्षण संस्थान आर्किड बिजनेस कॉलेज। आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोर पटना में है। साथियों, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और टेक्निकल पढ़ाई करके ही आप अपने करियर में आगे की ओर जा सकते हैं, ऊंचाइयां दे सकते हैं। अगर आप BCA और BBA की सोच रहे हैं, और अगर नहीं सोच रहे तो एक बार सोचिएगा, विचारिएगा कि BCA और BBA की पढ़ाई आपके लिए कितना जरूरी और लाभदायक हो सकती है। और अगर आपने सोचा तो जरूर डायल कीजिएगा आर्किड बिजनेस कॉलेज के इस नंबर पर। नंबर है 7520800 यानी 7520800। आर्किड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर आशीष आदर्श जी से लगातार जी हाँ दो एपिसोड से बातचीत चल रही है। आर्किड बिजनेस कॉलेज के विषय में एक चीज और बता दें कि ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त BCA और BBA के लिए एकमात्र संस्थान है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
1: और अब आइए चलते हैं आशीष जी से बातचीत का सिलसिला।

0: ला आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल हैं हमारे पास, हम सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे और ढेर सारी बातें होंगी आपके करियर के लिए, क्योंकि ये करियर काउंसलर भी हैं। आशीष जी, बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से उड़ान कार्यक्रम में, और हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं, और वो ये है कि बीसीए और बीबीए या कोई भी कोर्सेज अगर करने स्टूडेंट जाते हैं ना, तो संस्थान का चुनाव हाँ कैसे करें, क्योंकि आज बहुत ज्यादा चकाचौंध है, इतने ज्यादा संस्थान हैं, हाँ तो इसमें संस्थान का चुनाव बहुत मायने रखता है।
1: देखिए, एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसा स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीजें मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बीसीए किया या बीबीए किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है, जॉब कितना परसेंटेज। अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, अभी तकरीबन पिछले महीने 2026 के प्लेसमेंट्स की बात मैं करता हूं, अभी तक लगभग हमारे यहाँ 450 स्टूडेंट करीब पास आउट करके निकले हैं, लगभग 200-225 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, 200-225 के बीच में, और बाकी अभी कंपनियां 4-5 कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोलती है कि भाई एग्जाम के बाद हम परीक्षा के बाद हम उनको इन कैंपस इंटरव्यू आपके यहाँ करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए हम छुट्टी नहीं देंगे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है पार्ट थ्री की, रिजल्ट भी अब एक दो दिन में आने वाला है, तो इसीलिए अब बहुत सारी कंपनीज लाइनअप कर रही हैं, वो आ रही हैं, और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही, बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
0: एंड फैकल्टी, टीचर्स?
1: देखिए, टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है, आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहाँ जाकर रिव्यूज देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
0: बहुत खूब आशीष जी, आपने एकदम सिलसिलेवार तरीके से बता दिया, और ये भी ऑनेस्टी के साथ कहा कि हर संस्थान जो है बढ़ा चढ़ा कर विज्ञापन देता है, और दो तीन चीजों को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा एंड ऑफ द डे जो रोजगार की बात होती है कि पढ़ने के बाद रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आपने खुलकर की हैं एकदम साफ साफ, यही चीजें मुझे पसंद हैं। इसके अलावा टीचर्स को आपने संस्थान की आत्मा कहा, जो 100% सही है, खुले मन से खुले दिमाग से बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के करियर का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। बीसीए और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है, टेक्निकल पढ़ाई अगर हम जानना चाहें ना तो बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत वाइब्रेंट है, रोजगार भी मिल जाता है, और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं जिन्होंने 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई जारी रखी है और आज एक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आर्केड बिजनेस कॉलेज। हम नंबर दे रहे हैं, जरूर बात कर लेंगे, डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, और कोई सोचिएगा नहीं, विचारिएगा नहीं, एक फोन कॉल जरूर बनता है आपके अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, और नंबर है 7520800800, 7520800800, 7520800800। आशीष जी, हम दूसरे संस्थानों पर बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कुछ बुरा लग सकता है, एक जनरल बातचीत हो रही है, और हमने आर्केड बिजनेस कॉलेज को हाँ इसके सेंटर में रखा है क्योंकि एडमिशन ले ना लें, लेकिन सही जानकारियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपने जो सफर 27 साल पहले बीसीए और बीबीए को लेकर शुरू किया, लेकिन अभी तो एकदम बंच ऑफ कोर्सेज हैं आपके पास, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, एडमिशन हो ना हो ये बाद की बात आती है, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि कोई भी इस तरीके के कोर्सेज में जाने से पहले 7520800800, 7520800800 नंबर है, जरूर फोन करके बात कर लेंगे। बहरहाल बताइए।

0: ये अपने कॉलेजेस, अपने इस तरीके के टेक्निकल कोर्सेज के बारे में।
1: देखिए, आर्केड ग्रुप के ऑल टुगेदर 3 कॉलेजेस हैं। एक आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़, और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ। ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहां पर हमने बीसी बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहां चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं। और ये हमने 2025 से शुरू किया है। और आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि सारे जो जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सब हमारी फुल हो रही है और काफी अच्छे संख्या में छात्र आ रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को भी लगता है कि जब हमारे पास एमबीए एमसीए की व्यवस्था है यहाँ पे, अब वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ, हमारे यहाँ जो है छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड खुद आराम से हम सारा प्रोसेसिंग करा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है कि हम कैसे इसको करेंगे, तो हम तो सभी स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि भाई तुमको कोर्स करना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी है, तुम हमारे पास चले आओ, तुम्हारा सारा काम, सारा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, सारा कुछ हम तुमको समझाएंगे, समझा करके सारा प्रोसेसिंग तुम्हारा करा करके तुमको हम पेपर दे देंगे। तो सारी चीज़ें उसके बाद से फिर एक दो प्रक्रिया है जो प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, जा करके एक जगह फॉर्म जमा करना पड़ता है। लेकिन उसके पहले कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जितनी भी सारा गाइडेंस हमारी तरफ से होगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी इन सुविधा के दौरान के साथ साथ में आप एक बहुत ही स्मूथ तरीके से अपना कोर्स हमारे यहाँ से पूरा कर सकते हैं।
0: कितना कितना चेंजेज आया है बच्चों के टेम्परामेंट।
1: देखिए, ऐसा है कि अगर आपके पास अच्छे टीचर हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी है तो छात्र कभी भी आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपके आपके साथ रहेगा। तो स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट सही है, अगर आप अपने काम में ठीक हैं, अगर आप अपने कॉलेज में अच्छे से बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से उनको आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको सारा, आज आपको बताऊं कि बिहार का शायद ये एक ऐसा एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जिसमें इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब कभी हम लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं, कभी किसी को, वेबसाइट पे आप जाके देखिए, आपको दुनिया भर की चीजें, एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी।
0: उड़ान कार्यक्रम चल रहा है, लगातार हम आते हैं हर एक साल इसी समय और इस रेडियो कार्यक्रम उड़ान के माध्यम से अपने युवा साथियों को जानकारियां देते हैं टेक्निकल पढ़ाई की, खास करके बीसीए और बीबीए के बारे में। और ऐसी स्थिति में हम गार्जियन से भी कहते हैं, हमारे बड़ों, आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जरूर इससे कुछ आपको भी पता चल रहा होगा कि संस्थान के अंदर जहां आपके बच्चे पढ़ने जाएं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए जो उनके अपने करियर में उन्हें ऊंचाइयां देगा। आप भी फोन कर सकते हैं, खुलकर फोन कीजिए, सवाल पूछिए, जो भी आपके अंदर में है ना सवाल, उसको पूछ डालिए, आफ्टर ऑल आपके बच्चों का सवाल है। और नंबर है 7520800800, 7520800800, 7520800800। अब जैसे हम इसमें बताते हैं कि स्थायी मान्यता प्राप्त, हाँ, किसी को टेम्पररी मान्यता भी दे दी जाती है, किसी को 2 साल 4 साल इस तरीके से भी होता है, लेकिन संस्थान यदि स्थायी मान्यता प्राप्त है ना, तो कहीं से कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। और आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
4: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: आशीष जी, अब एक सवाल ऐसा जिस पर बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं ऑलमोस्ट पूरे बिहार से, कि गांवों के रहने वाले हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल या अंग्रेजी हमारी थोड़ी कमजोर है, हमें झिझक है, हम शहर में आके वैसे बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इसके विषय में बताइए कि आप कहाँ डिफरेंट हैं दूसरों से।
1: देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, देखिए गांव के लड़कों बच्चों के साथ में एक ही डिमेरिट है, वो है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा पुअर है, वो न अंग्रेजी ढंग से बोल पाते हैं न हिंदी ढंग से बोल पाते हैं, और उसके अलावा स्किल्स की कमी नहीं है। आप आज देखिए ना, जितने भी टॉपर्स हैं सब गांव देहात के स्कूल्स के निकलते हैं, कहाँ टैलेंट पे कमी है। तो मैं समझता हूँ कि उस सभी स्टूडेंट्स को हमारे पास आना चाहिए। मैंने जैसा भी आपको बताया कि हम लोग शुरू में जो भी बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके लिए एक स्पेशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कराते हैं, जो उसको अटेंड करना पड़ता है, जिसके बाद वो लड़का स्मार्ट हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें वो उसके दिमाग से निकल जाती है, जो एक जो टैबू जो है काफ़ी दिमाग में जो चीज़ें, मतलब भ्रांतियां हैं, वो ख़त्म हो जाती है, और अपने आप को वो अपने आप 3 महीने के बाद में तीन महीने के बाद खुद को उसको समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या तब्दीली हुई। जो बच्चा आपको मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला सकता हूँ अपने यहाँ से, जो जिसको जिसको एक लाइन बोलना नहीं आता था, डरता था।

0: मुकाबले में आज वो स्टेज पर खड़ा होकर के परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम बेहतर से बेहतर वहाँ पे वर्कशॉप कराएंगे जिससे उन बच्चों के अंदर का जो झिझक है वो खत्म होगी, क्योंकि झिझक अगर करके कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा तो कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको निश्चित तौर पर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा और उसमें हम उसकी पूरी मदद करेंगे।
1: जवाब मिल गया जिन लोगों ने भी फोन कॉल करके पूछा था उड़ान में कि हमारा क्या होगा। अरे आशीष जी ने कहा आप किसी से कम नहीं है, बस चंद दिनों के बाद आप कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मित्रों। बीसी और बीबीए बहुत ही उम्दा कोर्स है और उतना ही उम्दा है आर्केड बिजनेस कॉलेज। आप एडमिशन ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फोन करके जरूर बात कीजिएगा, जानकारियां लीजिएगा जिससे इंस्टीट्यूशन को चुनने में आपको मदद मिल सके। नंबर है 7520800800। जी हाँ आशीष जी, चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा।
0: ये जो समय है, दो समय में से कोई एक समय चुनना है, या तो अभी 5 साल की मेहनत पूरे जीवन भर का आराम, या अभी 5 साल का आराम पूरे जीवन भर कश्मकश। चुनना आपको यही है और स्टूडेंट्स को भी अपने लिए स्वार्थी हो जाना चाहिए पूरी तरह से, और ये 5 साल वो अपना पूरा फोकस करे अपने पढ़ाई में और अपने करियर को बनाने में।
1: थैंक यू आशीष जी, बिल्कुल सही कहा, एकदम सेल्फिश हो जाना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड। 5 साल या जो भी साल अभी के हैं उसमें खूब मेहनत और भविष्य निर्माण की बातें होनी चाहिए। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, बीसीए और बीबीए बहुत ही उम्दा कोर्स है, इसमें आगे चल के आप एमबीए और एमसीए करके अपने करियर को और सजा सकते हैं। फिलहाल उड़ान कार्यक्रम का लक्ष्य है सही चीजें आप तक पहुँचाना। हम सिर्फ ऐसी बात कर रहे थे जिससे कि आपको आधार मिल सके, जानकारियां मिल सके, उड़ान कार्यक्रम इसीलिए आता है। बहरहाल आर्केड बिजनेस कॉलेज का हम नंबर बताना चाहेंगे जहां से आप जानकारियां ले सकें, 7520800800, 7520800800। फोन कीजिएगा, जानकारियां लीजिए, सवाल पूछिए और करियर में आगे बढ़ जाइए। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: उड़ान, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के आज के इस नए अंक के साथ मैं आपका दोस्त कल्याण कुमार झा। श्रोताओं, आज के अंक में हम बातें करेंगे हमारे धर्म ग्रंथ हमारे पर्यावरण के बारे में क्या कहते हैं, जिसका विषय होगा हमारा पर्यावरण और हमारे धर्म ग्रंथ। हम कार्यक्रम के दौरान एक और विषय पर चर्चा करेंगे जो आधारित होगा हमारे पर्व त्यौहार और हमारे पर्यावरण के बीच तारतम्यता पर, जिसका विषय होगा हमारा पर्यावरण और हमारे त्यौहार। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अपनी पहली चर्चा से, जिसका विषय है हमारा पर्यावरण और हमारे धर्म ग्रंथ। श्रोताओं, इतिहास निरंतर चलने वाली वह अनवरत प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान में घटित समस्त घटनाएं भूतकाल में पहुंचते ही इतिहास की विषय वस्तु बन जाती है। इतिहास देश और काल की सीमा में आबद्ध होता है तथा देश एवं काल का एक प्राकृतिक परिवेश होता है। प्रकृति एवं पर्यावरण के दायरे में सिमटकर ही घटनाएं निरंतर इतिहास की विषय वस्तु बनती रहती है। अतः यह प्रकृति एवं पर्यावरण से इतर नहीं होता। विकास, ह्रास, उन्नति, अवनति, उत्थान, पतन प्रकृति के

शाश्वत नियम है जिसमें निहित तथ्य ही इतिहास के निर्माण में सहायक होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रकृति एवं पर्यावरण ही इसका मुख्य उत्तरदायी कारक हैं। मानव समस्त प्राणियों में सर्वाधिक बुद्धिजीवी के रूप में स्वीकार किया गया है। बुद्धिमत्ता से पूर्ण मानव ने अपनी भूतकालीन घटनाओं को पिरोने हेतु इतिहास रूपी वृक्ष का रोपण करने के लिए उत्प्रेरित किया है, किंतु कालांतर में इसी बुद्धिमत्ता ने पर्यावरण संबंधी तत्वों के अतिशय दोहन से उसे क्षत विक्षत कर दिया, जिसका परिणाम वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान युग में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक

समस्त प्राणियों में सर्वाधिक बुद्धिजीवी के रूप में स्वीकार किया गया है। बुद्धिमत्ता से पूर्ण मानव ने अपनी भूतकालीन घटनाओं को पिरोने हेतु इतिहास रूपी वृक्ष का रोपण करने के लिए उत्प्रेरित किया है, किंतु कालांतर में इसी बुद्धिमत्ता ने पर्यावरण संबंधी तत्वों के अतिशय दोहन से उसे क्षत विक्षत कर दिया, जिसका परिणाम वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान युग में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, वन्य जीवों का संहार तथा परमाणु परीक्षणों से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। इस प्रदूषण प्रसार के लिए मानव जनित कर्म ही उत्तरदायी हैं। पर्यावरण की शुद्धि न केवल सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक होती है, अपितु हमारे शारीरिक, मानसिक आदि सभी प्रकार के विकास हेतु भी आवश्यक होती है। प्राचीन काल में प्रदूषण की समस्या वर्तमान की भांति विकराल नहीं थी, फिर भी हमारे दिव्य दृष्टा ऋषियों मनीषियों का पर्यावरण के संदर्भ में चिंतन व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक था। प्रकृति से मानव समाज का संबंध सभ्यता के आरंभ से रहा है। मानव सभ्यताएं एवं संस्कृतियां प्रकृति के संरक्षण ही में पुष्पित, पल्लवित व विकसित हुई हैं। प्रकृति ने मनुष्य का पोषण एवं संवर्धन किया और बदले में मानव ने प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान किया। श्रोताओं, मानव और प्रकृति का परस्पर घनिष्ठ संबंध रहा है। पर्यावरण शब्द का निर्माण ही परि और आवरण से हुआ है, जिसका अर्थ है चारों तरफ से घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर जो वातावरण है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उपभोग करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक सभी तत्व, आकाश, जल, अग्नि, ऋतुएं, पर्वत, नदियां, तराग, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र, दिशाएं, यानी एक तरह से अखिल ब्रह्मांड ही समाहित हो जाता है। वातावरण के ये सभी तत्व मानव जीवन को प्रभावित करने के साथ ही स्वयं भी मानवीय कृत्यों से प्रभावित होते हैं। मानव जीवन का कोई भी पक्ष वातावरण से पृथक नहीं हो सकता। नित्य क्रिया, व्रत, संस्कार, अनुष्ठान, त्यौहार, क्रियाकर्म, पूजा पद्धति, नृत्य गीत, सभी में पर्यावरण समाहित है। भारतीय लोक जीवन में न केवल पृथ्वी, जल, वायु, अंतरिक्ष, अग्नि, सोम, सूर्य इत्यादि पूजनीय हैं, अपितु परंपरागत नदी, पहाड़, जलाशय, पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियां, सभी की पूजा का वर्णन हमारे प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में मिलता है। भारत में प्राचीन काल ही से वृक्ष पूजा, जल पूजा, नदी पूजा, मातृदेव पूजा आदि के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय परंपरा में प्रकृति एवं मानव जीवन को परस्पर संबंधित करके एकीकृत अस्तित्व की परिकल्पना की गई है। प्राचीन धर्मग्रंथों में ऋग्वेद को आदिकालीन प्राचीनतम धर्मग्रंथ कहा गया है। इसके औषधि सूक्त में वृक्षों और वनस्पतियों के औषधीय गुणों के बारे में कहा गया है और उन्हें माता की उपमा से विभूषित किया गया है। वहीं पृथ्वी हमारा भरण पोषण करती है, इसलिए पृथ्वी को माता तथा आकाश हमारी रक्षा करता है, अतः आकाश को पिता कहा गया है। ऋग्वेद में वृक्षों को संरक्षित करने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि वृक्षों को न काटो, क्योंकि ये प्रदूषण को नष्ट करते हैं। यजुर्वेद में पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन के लिए

मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अनुशासित करने के लिए कहा गया है कि जो कुछ भी प्रकृति के कण कण में है उसमें ईश्वर का वास होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए त्यागपूर्वक भोग करना, लोभ न करना जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचे। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को वृक्ष वनस्पतियों के माता के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भी पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। भारतीय चिंतन का शिखर ग्रंथ उपनिषद, इसमें ऋषि मुनियों एवं मनीषियों द्वारा विद्यार्थियों को अपने समीप बैठाकर प्रकृति के गूढ़ रहस्यों तथा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में शिक्षा दी जाने का विस्तार पूर्वक वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य में भी प्रकृति एवं पर्यावरण के समस्त तत्वों का समावेश किया गया है और कहा गया है कि वायु प्राण है, वायु परम सुख है तथा वायु ही संपूर्ण जगत का मूल है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत में धार्मिक, प्राकृतिक एवं लोक कथाओं के माध्यम से प्रकृति एवं पर्यावरण के महत्व को इंगित किया गया है। प्राचीन स्मृतियों में भी पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान एवं निर्देश देते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति हरे पेड़ पौधों की कटाई करे उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ विधान पर जोर देते हुए कहा गया है कि अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होते हैं, वर्षा यज्ञों से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार ईश्वर और प्रकृति के बारे में कहा गया है कि ईश्वर ही प्रकृति की उत्पत्ति, पालन और विनाश का मूल कारण है। अर्थात ईश्वर और प्रकृति दो अलग अलग तत्व न होकर एक ही तत्व के दो रूप हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं समस्त वृक्षों में पीपल हूँ, अर्थात पीपल के वृक्ष का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं वरन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाला भी बताया गया है। निष्कर्षतः प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में प्राचीन काल ही से भारतीय ऋषि मुनियों एवं मनीषियों ने पर्यावरण के प्रति गहन संवेदनशीलता का संदेश सामान्य जन तक पहुंचाता रहा है एवं प्रकृति तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रकृति के पांच प्रमुख घटक को स्वच्छ रखना ही मानव धर्म का परम कर्तव्य बताया गया है। केवल भारतीय सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न धर्म व संप्रदाय के धर्म ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण को धर्म का मूल कर्तव्य बताया गया है तथा इस हेतु विभिन्न उपायों एवं सुझावों को दर्शाया गया है। इस्लाम के अनुसार पृथ्वी का मालिक खुदा है तथा यहाँ इंसान की भूमिका खलीफा अर्थात खुदा के न्यासी की है तथा इंसान का कार्य पृथ्वी और इसके विभिन्न अवयवों की रक्षा करना है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार सृष्टि की रचना जल से हुई है तथा जल को व्यर्थ बहाना इसराफ यानी पाप है। इसके अलावा किसी भी प्राकृतिक संसाधन का व्यर्थ उपयोग यानी दुरुपयोग वर्जित है। ईसाई धर्म का मत है कि सभी जीवों की रचना ईश्वर के प्रेम का रूप है तथा मानव को जैविक विविधता एवं ईश्वर की रचना को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग और उनके संरक्षण पर जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म पूर्णतः प्रेम, सद्भाव तथा अहिंसा पर आधारित है। यह प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे करण कारण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का प्रभाव होता है। इसे हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत के समान माना जाता है, अर्थात मानव के व्यवहार का प्रभाव उसके पर्यावरण पर पड़ता है।

बौद्ध धर्म साधारण जीवन शैली को बढ़ावा देता है जो सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है। यह संसाधनों के अतिदोहन को वर्जित करता है। बौद्ध धर्म सभी प्राकृतिक जीवों की परस्पर निर्भरता में विश्वास करता है, जिसमें सभी जीव जंतु, वनस्पतियां, नदी, पर्वत, जंगल इत्यादि शामिल हैं। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है तथा किसी भी जीव जंतु, वनस्पति आदि को नुकसान पहुंचाना वर्जित है। अतः जैन धर्म में प्रकृति व इसके सभी जीव जंतुओं को समान माना गया है तथा इनका संरक्षण और इनके प्रति समान व्यवहार करना इस धर्म की मूल शिक्षा है। सिख धर्म के अनुसार संसार में स्थित सभी वस्तुएं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करती हैं तथा ईश्वर उनकी रक्षा करता है। सिख धर्म दिखावे के लिए किए गए व्यय अर्थात खर्चे का निषेध करता है। इसके पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार सभी जीव जंतुएं वृक्ष, नदी, पर्वत, समुद्र इत्यादि को ईश्वर का रूप माना गया है। यहूदी के हिब्रू बाइबिल तोराह में प्रकृति के संरक्षण के लिए अनेक नैतिक जिम्मेदारियां दी गई हैं। तोराह के अनुसार जब ईश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे स्वर्ग के बगीचे दिखाए और कहा, मेरे कार्यों को देखो, कितने सुंदर हैं ये, मैंने जो भी बनाया है वे सब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है और यदि तुमने इसे नष्ट किया तो तुम्हारे बाद इसे ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह यहूदी धर्म भी पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व देता है। श्रोताओं, इन सभी धर्म तथ्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण ही सभी धर्मों का मूल है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण हेतु धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं, उस पर कुछ बातें कर लें। विश्व के सभी धर्मों में पर्यावरण को संरक्षित करने की बात कही गई है। जैसा कि चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हो गया है, प्रकृति के संरक्षण के लिए विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा वैश्विक या स्थानीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्थित कपड़गाहों में प्राचीन वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इनको काटना गुनाह माना जाता है। लेबनान के मेरोनाइट चर्च ने हरीसा के जंगलों को पिछले 1000 वर्षों से संरक्षित रखा है। थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं ने संकटग्रस्त जंगलों की रक्षा हेतु वहां छोटे छोटे विहारों की स्थापना की है तथा उसे पवित्र जंगल घोषित किया गया है। इसके अलावा जर्मनी के 300 चर्चों ने स्थानीय समुदायों के सहयोग से सौर ऊर्जा प्रणाली अपनाई है तथा वृहत स्तर पर इसका लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों द्वारा क्वांजो त्यौहार प्रकृति संरक्षण का एक उपयुक्त उदाहरण है। वर्ष 1986 में इटली के शहर असीसी में विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा असीसी घोषणा का आयोजन किया गया। इसमें विश्व के 5 प्रमुख धर्मों ईसाई, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध तथा यहूदी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था ताकि वे इस मुद्दे पर सुझाव प्रस्तुत कर सकें कि उनके धर्मों में प्रकृति संरक्षण हेतु क्या प्रावधान है तथा किस प्रकार वे योगदान कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न धर्मों के सहयोग से अलायंस ऑफ रिलीजन एंड कंजर्वेशन नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। WWF तथा ARC के सहयोग से लिविंग प्लैनेट कैंपेन नामक एक मुहिम शुरू की गई। इसके तहत विश्व के प्रमुख धर्मों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की तथा उनकी इस प्रतिबद्धता को जीवंत पृथ्वी के लिए पवित्र उपहार का नाम दिया गया। इस अभियान के तहत वकालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, संपत्ति, जीवन शैली तथा मीडिया के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना शामिल है। इस प्रतिबद्धता के तहत जैन धर्म ने अंतर्राष्ट्रीय जैन व्यापार पुरस्कार प्रारंभ किया है। इसके तहत उन कंपनियों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए प्रगति की है। इसी प्रकार स्वीडन के लूथरन चर्च के सहयोग से

स्वीडन में नेशनल फॉरेस्ट स्टेवर्डशिप काउंसिल की स्थापना की गई। इसी तरह विभिन्न स्तर पर सभी धर्मों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी धर्म और पर्यावरण के बीच हमारे संबंधों की बातें। अब रुख करते हैं कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के आज के इस अंक की दूसरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है हमारा पर्यावरण और हमारे त्यौहार। श्रोताओं, हमारे त्यौहार भी मूल रूप से हमारे धर्म से जुड़े हैं और धर्म हमारे पर्यावरण से। इस तरह हमारे उत्सव, त्यौहार, धर्म और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक और संवर्धक तथा संरक्षक भी हैं। हमारा कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिसका संबंध हमारे पर्यावरण से नहीं है। आइए हम बारी बारी से हमारे कुछ प्रमुख त्यौहारों का पर्यावरण के साथ तालमेल के बारे में चर्चा करते हैं। श्रोताओं, हमारी भारतीय संस्कृति और पर्यावरण का गहरा नाता है। हमारे कई त्यौहार जैसे छठ पूजा सीधे तौर पर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि बदलते समय और आधुनिकीकरण के कारण त्योहारों में होने वाले प्रदूषण जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि तथा कचरे की समस्या ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। त्योहारों से जुड़े मुख्य पर्यावरणीय प्रभावों पर एक नज़र डालते हैं तो वायु और ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत दिवाली जैसे त्योहारों पर पटाखों का भारी मात्रा में उपयोग हवा को जहरीली बना देता है। जल और प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो होली पर रासायनिक रंगों का पानी और गणेश चतुर्थी पर POP से बनी मूर्तियों का विसर्जन जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। अपशिष्ट और संसाधनों की बर्बादी की दृष्टि से आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और पानी की फिजूल खर्ची पर्यावरण पर भारी दबाव डालती है। यदि हम अपने उत्सवों और त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं तो पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। त्योहारों में केवल प्राकृतिक और इको फ्रेंडली मिट्टी या गाय के गोबर से बनी मूर्तियों का ही प्रयोग करना आवश्यक है। होली खेलने के लिए हल्दी, फूलों और प्राकृतिक चीज़ों से बने रंगों का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल होता है। कम हानिकारक या ग्रीन पटाखों का उपयोग करना तथा दीयों व प्राकृतिक रोशनी से सजावट को प्राथमिकता देना। प्लास्टिक का त्याग, घर के पकवानों के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक की जगह पत्तियों या इको फ्रेंडली बर्तनों का उपयोग करना पर्यावरण के हित में होता है। तो श्रोताओं, भारतीय त्योहारों की जीवंत विविधता को अपनाते हुए अब समय आ गया है कि हम इन हर्षोल्लास के अवसरों को अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीकों से मनाने पर अमल करें। होली के जीवंत रंगों से लेकर दिवाली की जगमगाती रोशनी और रक्षाबंधन के प्रेमपूर्ण बंधन तक प्रत्येक त्यौहार का अपना अनूठा सांस्कृतिक महत्व है। इस तरह हमारे त्योहारों के पर्यावरणीय प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां त्यौहार हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, यहां अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इन परंपराओं का पालन करते हुए पर्यावरण पर पड़ने वाले अपने नकारात्मक प्रभाव को कम करने के तरीके खोजें तथा अपनाएं। पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर हम न केवल अपने उत्सवों की सुंदरता को संरक्षित कर सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की रक्षा भी कर सकते हैं। होली एक रंगीन और पर्यावरण के अनुकूल उत्सव कैसे होगा? श्रोताओं, रंगों का जीवंत त्यौहार होली सदियों से हमारे दिलों को मोही हुई है। हालांकि कृत्रिम रंगों और पानी की अत्यधिक खपत ने पर्यावरण पर बुरा असर डाला है। होली को अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने के लिए हम प्राकृतिक तथा पौधों से प्राप्त रंगों का उपयोग कर सकते हैं जो न केवल देखने में सुंदर हैं बल्कि पृथ्वी के लिए भी कम हानिकारक हैं। हल्दी, चुकंदर और अनार जैसी सामग्रियों से बने प्राकृतिक रंगों का चुनाव जो न केवल उत्सव में एक अनूठा आकर्षण जोड़ते हैं बल्कि त्वचा को पोषण भी देते हैं। इसके अलावा पानी के उपयोग के प्रति सचेत रहना और होली समारोह के लिए वर्षा जल संचयन या पुनश्चक्रिय जल के उपयोग जैसी तकनीकों का उपयोग करना पर्यावरण के हित में होगा।

अपने स्थानों को फूलों, पत्तियों और जैव अपघटनीय मालाओं जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से सजाना बेहतर है। अपने आसपास के लोगों को इन्हीं तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। दिवाली जिम्मेदारी से रोशन करें। श्रोताओ, दिवाली रोशन का त्यौहार एक सदियों पुरानी परंपरा है जो हमारे घरों और दिलों को रोशन करती है। हालांकि ऊर्जा की अत्यधिक खपत करने वाली रोशनी और पटाखों के फोड़ने से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, दिवाली को अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने के लिए LED या सौर ऊर्जा से चलने वाली सजावट का चुनाव करें, जो न केवल ऊर्जा की खपत को कम करती है बल्कि स्वच्छ और हरित भविष्य में भी योगदान देती है। पारंपरिक पटाखों के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बने फूलझड़ियों या LED आधारित पटाखे आजमाना आवश्यक हो गया है, जो हानिकारक उत्सर्जन किए बिना उतना ही आकर्षक दृश्य प्रदान करते हैं। उपहार देते समय हस्तनिर्मित जैविक उत्पादों जैसे टिकाऊ विकल्पों को चुनना, जो पृथ्वी पर बोझ डाले बिना स्थायी यादें बनाते हैं। ईद सचेत उत्सव। ईद चिंतन, सामुदायिक जुड़ाव और उत्सव का संगम है और यह टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने का एक अवसर है। ईद के पारंपरिक पकवान बनाते समय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक सामग्रियों का उपयोग करने पर ध्यान देना आवश्यक है और भोजन की योजना सोच समझकर बनाकर भोजन की बर्बादी को कम करना भी आवश्यक है। मिठाई और पकवान बांटने के लिए पुनः उपयोग योग्य बर्तनों और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए अपने समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करना भी अपनी ही जिम्मेदारी है। ईद के परिधानों की बात करें तो टिकाऊ और नैतिक रूप से उत्पादित कपड़ों में निवेश पर विचार करें, जो स्थानीय कारीगरों का समर्थन करते हैं और फास्ट फैशन के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करते हैं। सोच समझकर चुनाव करके हम ईद की भावना का सम्मान करते हुए पृथ्वी पर कम से कम बोझ डाल सकते हैं। रक्षाबंधन, बंधनों को सतत रूप से मनाना। श्रोताओ, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का उत्सव है जो भारतीय संस्कृति में एक सदियों पुरानी परंपरा है और बहुत महत्व रखता है। जब हम स्नेहपूर्वक राखियों और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं तो आइए पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को दर्शाने वाले पर्यावरण अनुकूल विकल्पों पर विचार करें, जैसे कपास, जूट या पुनश्चक्रित कागज जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनी जैविक हस्तनिर्मित राखियों को व्यवहार में लाकर रक्षाबंधन पर अपनी पृथ्वी की रक्षा को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। विशिष्ट त्योहारों के अलावा ऐसे कई सामान्य तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने उत्सवों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। अपशिष्ट कम करने की रणनीतियाँ, अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी प्रणालियाँ लागू करें, जैसे पुनश्चक्रण योग्य सामग्री को अलग करना, जैविक अपशिष्ट का खाद बनाना और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग कम करना। स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल उत्सव मनाने के लिए अपने समुदाय को इन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग, त्योहारों से संबंधित वस्तुओं जैसे सजावट के सामान से लेकर खाने के डिब्बों तक के लिए जैव अपघटनीय, खाद योग्य या पुनः प्रयोज्य पैकेजिंग विकल्पों का चुनाव करें। टिकाऊ पैकेजिंग समाधानों को प्राथमिकता देने वाले स्थानीय कारीगरों और व्यवसायों का समर्थन करें। स्थानीय टिकाऊ व्यवसायों का समर्थन करना, अपने फेस्टिवल की जरूरतों के लिए स्थानीय पर्यावरण के प्रति जागरूक विक्रेताओं और व्यवसायों को खोजें जो टिकाऊ उत्पाद और सेवाएं प्रदान करें। इन उद्यमों का समर्थन करके हम न केवल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहे हैं, और पर्यावरण का एक घटक अर्थव्यवस्था भी है। तो श्रोताओ, देखिए ना, बातों ही बातों में कार्यक्रम का समय भी अपने समापन की ओर अग्रसर है। तो कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के आज के अंक से प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद के साथ सूत्रधार मुझे यानी कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ये साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: और अब समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के

0: बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं, ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें

0: गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के दो विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री

0: ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Shri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and enriching the shared journey. In a special gesture, Prime Minister Modi handed over the Made in India fast patrol vessel to President Dr. Patrick Hermini. He also handed over 6 ambulances, 10 utility vehicles and 5 laser radial boats, which will further contribute to the development and security of Seychelles. Prime Minister

0: Convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Aisha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova. 11-5, Puneet Suresh and Deepti Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alyssa Kuleshova 11-10 to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द-बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जनाब मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं, जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहां पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशल्स के दरमियान मुश्तरक अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान रابطे मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी, जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में

0: शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारतीय बहरिया का अंदरून मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सिशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सिशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना राब्ते कायम करेगा, जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीक़ेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और

0: आसानी से नशर की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर वखोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि एसआईटी की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से मुतालिक मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी से मुतालिक पेपर लीक होने के एक बड़े वाकये का राज भिवंडी में फाश हुआ है। इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन कबल इस बात का इल्म हुआ और पेपर लीक मामले में मुलविस तीन मुबैना अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन टीईटी के सवालनामे दिल्ली से लेकर आए थे और वो मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये की मालियत के एक सौदे में उन्हें फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। एक सुराग मिलने पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी की पुलिस ने एक जाल बिछाया और लेन देन तय पाने से कबल ही तीन मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इतवार को होने वाले टीईटी के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस वाकये के सबब महाराष्ट्र भर में लाखों उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। मगरबी एशिया में चार महीने से जारी महाजराई को खत्म करने की गरज से दो हफ्ते पहले तय पाई कमजोर जंगबंदी को इंतहाई दबाव का सामना है। पिछले 48 घंटे में अमरीका और ईरान के दरमियान कई हमले और जवाबी हमले हुए हैं। हमलों ने जुमेरात के रोज उस वक्त जोर पकड़ा जब आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल जहाज पर किए गए ईरानी हमले के जवाब में अमरीका की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद तेहरान के बकौल आज खत्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन के खिलाफ उसका हमला एक दिफाई हमला था। दोनों ही मुल्क अबूरी माहदे की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि अमरीका और ईरान दोनों ही जैसे को तैसा मुहावरे पर अमल करते हुए फौजी कार्रवाइयों के एक सिलसिले में मुलविस हो गए हैं, जिससे सालिस मुल्कों की सिफारती कोशिशों को खतरा लाहक हो गया है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:04 पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू जिलों समेत मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। अहलकारों ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जलजला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: की जो गहराई है वो 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर मतला अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जोफो को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर

जो कि सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान आज़ादी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बोर्ड से मुतालिक मामलों के बाद अखलाक बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के

0: अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं।
1: जी
0: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी की उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई, तो घरों को सुरक्षित बनाए, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
2: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
4: ये

0: बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबेल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
0: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
0: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
0: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पे लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांव में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है।

0: चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
0: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं, और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के

0: द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों

0: फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
1: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक एआईजी अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिले।

0: मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
2: He was initiated by Shri Dulal Roy.
1: He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padmasri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries: Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र

0: के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप